1500 रुपए में घर लाएं ये जादुई मशीन, बस दूध डालें।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 40 सेकेंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: प्रिय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। 6 बजने वाले हैं
1: FM 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुक की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: वंदन वार,
3: वंदन वार।

गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है, विश्वास वो पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। अब लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान भाग 206। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर भाग 1। कलाकार हैं तबला वादक

रविंद्र खासनीस। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। पर त्रिवेणी 8:30 से सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज की फनकार आज का सुबह का यह कार्यक्रम केंद्रित होगा ख्वाजा अहमद अब्बास पर। सुबह 10 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मिथुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये पहला भाग सुनिएगा। 11 बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली। इसके अंतर्गत सुनेगा कथा सुधा आभूषण का भाग एक, दूसरा सुनेगा वैश्विक अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस, और इसके अंतर्गत सुनेगा उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का मुंगड़ी वाला मटर का निमोना, धनिया वाले मठी। शाम 4 बजे पिटारा में सेहतनामा दांतों की देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर जयेश चुगे से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:30 पर संध्या रंजन, 7:00 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा, 7:45 पर स्मृतियों के स्वर। इसके अंतर्गत सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्रीमती अनीता वैसले पटेल से ममता सिंह की बातचीत। हवा महल में रात 8 बजे सुनेगा प्रहसन इंटरव्यू, लेखन V.M. आनंद और निर्देशन है मुख्तार अहमद का। पर चित्रलोक, 9:00 आपके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। 9:30 पर आज के फनकार, इसके अंतर्गत सुनिएगा अभिनेत्री नरगिस पर ये कार्यक्रम रात का 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 206।

सेना तथा अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरि पर्वत के समीप पहुंचे।

0: हैं हमारे सहयोगी जयंत पात्रीकर। सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, कोई पूछे कि हमारे देश में रेडियो पर सबसे अधिक क्या सुना जाता है, तो वो है संगीत, और उसमें भी फिल्म संगीत के सुनने वालों की बहुतायत है। हमारा सिने संगीत संस्कारित है शास्त्रीय संगीत से। सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला का आज शुभारंभ हो रहा है। हमने आमंत्रित किया है श्री रविंद्र खासनेस जी को, जो आकाशवाणी के अश्रेणी संगीत रचनाकार हैं, आला दर्जे के तबला वादक हैं और हमारे अपने हैं, आकाशवाणी परिवार के आत्मीय सदस्य। रविंद्र जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: इससे पहले कि हमारी चर्चा शुरू हो,
2: हाँ,
1: हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें कि आकाशवाणी में से किस तरह से आपका जुड़ाव हुआ, कैसे आप आकाशवाणी में आए।
2: जी, मैं बचपन से ही संगीत से जुड़ा हूँ और मैंने तबला सीखने की शुरुआत जो है वो मेरे 6 साल के आयु में की है।
1: जी,
2: मैं शुरू में आकाशवाणी का चाइल्ड आर्टिस्ट था, उसके बाद में मैं आकाशवाणी का ही यूथ आर्टिस्ट बना।
1: क्या बात है।
2: और 1988 में मैंने UPSC की एग्ज़ाम देकर आकाशवाणी में मैं कार्यक्रम अधिशासी के रूप में मैंने ज्वाइन किया। मैं तो कई आकाशवाणी केंद्रों पर काम कर चुका हूँ महाराष्ट्र में।
1: जी,
2: क्योंकि संगीत से हमारा जुड़ाव था और हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते आए थे संगीत की, तो आकाशवाणी में आने के बाद में मैंने आकाशवाणी की म्यूज़िक कंपोज़र की ऑडिशन दी। कहते हैं कि अगर आपने हुनर है तो वो हुनर दिखाने के लिए आकाशवाणी जैसा और कोई व्यासपीठ है नहीं, तो आकाशवाणी ने तो मुझे बचपन से ही बहुत कुछ दिया। और उसी में जब नौकरी करने आया तब मैंने आकाशवाणी में म्यूज़िक कंपोज़र की ऑडिशन दी और मैं प्रभु की कृपा से Grade 1 म्यूज़िक कंपोज़र हूँ। कई सारे म्यूज़िकल फीचर हमने आकाशवाणी के लिए किए, उसके बाद में आकाशवाणी के सॉन्ग ऑफ द मंथ में कई सारे गानों में संगीत दिया।
1: क्या बात।
2: और बहुत सारी रचनाएं आकाशवाणी के लिए की है, तो ये मेरा संगीत का जो बचपन से जो प्रवाह शुरू हुआ तो आज तक लगातार जारी है।
1: क्या बात है। तो आज हमारे अपने एक अधिकारी हैं मगर एक कलाकार के रूप में,
2: हाँ,
1: आज श्रोताओं के सामने हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं आप। तो अपनी श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं।
2: हाँ।
1: फिल्म संगीत में, सिने संगीत में तबले का जो दौर है उसकी बात होगी और समय के अनुसार इसमें जो परिवर्तन आया है उस पर हम बात करेंगे।
2: जी,
1: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रविंद्र जी कि तबला ये जो वाद्य है इसका जन्म कैसे हुआ और इसके जन्म से जुड़ी कोई कहानी होगी तो उसके बारे में भी कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: हम लोग अगर हमारे पुराने स्कल्पचर देखते हैं
1: जी,
2: तो उसमें ज़्यादातर हमें यही दिखता है कि मृदुंग या पखावज
1: जी
2: ये वाद्य हमारे पास थे और हमारे यहाँ पर ध्रुपद धमार गायकी होती थी।
1: जी जी।
2: फिर जब अकबर बादशाह के ज़माने में ख्याल गायकी का विस्तार होने लगा तो उसमें ये होता था कि ख्याल का जो गायन है वो मृदु शैली में है और उसके ऊपर पखावज के बोल भारी पड़ते थे।
1: जी।
2: तो इसलिए शायद तबले के जन्म की कथा जो है वहाँ से शुरू ही हुई है। कहते हैं कि अमीर खुसरो साहब जो है उन्होंने पखावज को विभाजित किया, मतलब अच्छा, दो भागों में उसका विभाजन किया और उसका जो आकार है वो तबले का आकार उसका दिया।
1: जी।
2: तो बाया और दाया ऐसे उसके दो भाग हुए। और कहते हैं कि वो जब तोड़ा तब बोला।
1: हाँ।
2: तो तब बोला से वो तबला शब्द अच्छा, वहाँ से आया है। अब ये तो मतलब कहानी है, इस पर किसका कितना विश्वास होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन तबला वाद्य जो है ये वाद्य दाया बाया दोनों का मिला हुआ वाद्य है।
1: जी।
2: और उसने पखावज की तुलना में उसके जो बंद बोल है वो ख्याल गायकी के लिए बहुत अच्छे उसके साथ में मिल गए।
1: जी।
2: और इसलिए ख्याल

श्रोताओं नमस्कार। फिल्म संगीत के इतिहास को पलटें तो आप पाएंगे कि तबला इसमें पूरी चमक के साथ मौजूद है। इसलिए संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला के लिए हमारे विशेष अतिथि हैं आकाशवाणी परिवार के आत्मीय सदस्य और आकाशवाणी के प्रथम श्रेणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं।

0: गायन में तबला संगति का प्रचलन होने लगा।
1: पखावज के जो बोल होते हैं रविंद्र जी, हाँ, और तबले के बोल,
0: हाँ,
1: इनमें अंतर क्या है?
0: वैसे पखावज जो है वो खुला वाद्य है।
1: जी जी।
0: मतलब पखावज पे वो धा जो है वो खुला धा, धा,
1: खुला बाज कहा जाता है।
0: ता, जी, जी। इट धा दिन ता इट कत गदी गाना धा, तो पखावज जो है वो खुला वाद्य है, उस पे खुले बोल बजते हैं।
1: जी जी।
0: अब पखावज का जो धा खुला बजता है वही धा तबले पर बंद है वो धा। तो तबले की जो बोल है वो बंद बोल है
1: जी,
0: और पखावज के खुले बोल,
1: खुले बोल होते हैं।
0: वैसे शुरू में हमारे पास पखावज था, तो पखावज का जो साहित्य था वो बहुत विपुल साहित्य है पखावज का
1: जी,
0: तो उसी साहित्य को लेकर तबले का भी साहित्य बढ़ने लगा।
1: इसका भी एक अलग शास्त्र बना।
0: बिल्कुल, शास्त्र जी, बना जी। तबले के घराने बने, जैसे दिल्ली, अजराड़ा, पंजाब, बनारस, लखनऊ, ऐसे तबले के घराने बने।
1: हाँ हाँ।
0: और उसमें भी बहुत शैलियाँ विकसित हुई
1: जी,
0: और कई सारे तबले के मतलब स्वतंत्र वादन के कार्यक्रम और तबला संगत, ये दोनों चीज़ें उसमें आ गई।
1: जी जी। इसमें भी कुछ महनीय कलाकारों ने बोल निकालने का यानी तबले से बोल बजाने का अपना अपना तरीका विकसित किया है।
0: बिल्कुल, मतलब घराना जो होता है वो उसी विशेषता से लेकर होता है। घराने जो तबले के हैं
1: जी,
0: उनके जो बोल है,
1: हाँ,
0: उसके वो बोलों के आधार पर उसका घराना पहचाना जाता है। तो ऐसे तबले के घराने और उनका बोल और उनका पूरा साहित्य विकसित हुआ है।
1: जी जी।
0: पखावज के जो खुले बोल है
1: जी,
0: तो एक ऐसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं। अब तबले पे ही उसका मतलब निकास कैसे होती है, तबले पर पखावज की निकास है ये
1: जी।

0: तो ये पखावज का एक नमूना है कि ये खुला बोल पखावज पे बजता है। अभी ये तबले के जो बोल होते हैं वो बंद बोल है,
1: हाँ।
0: तो वो इस तरह से होते हैं।

0: वाह क्या बात। हम बात कर रहे थे रविंद्र जी चौताल की
1: जी।
0: तो चौताल जिस गीत में हमें सुनने को मिलता है, ऐसा कोई गीत आपको याद आ रहा हो तो अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
1: हाँ बिल्कुल याद आ रहा है। चौताल जो है धा धा दिन ता किट धा दिन ता तीट कत गदी गन धा
0: जी।
1: इसमें सप्त सुरन तीन ग्राम गीत है जो चौताल में निबद्ध है। बहुत ही लाजवाब है और बहुत कम ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं जो चौताल में मृदुंग के ऊपर पखावज के ऊपर वो बजाए गए हैं।
0: आइए सुनते हैं।

0: संगीत सम्राट तानसेन। इस फिल्म का गीत आपने सुना मन्ना डे के स्वर में, संगीतकार SN त्रिपाठी।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला की पहली कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला के लिए हमारे विशेष अतिथि हैं श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

आइए सुने कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

बात एक रात की। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और धुन एस टी बर्मन ने बनाई थी। कण कण में भगवान, लीजिए अब सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में ये गीत। इसे सुमन कल्याणपुर ने गाया है, भरत व्यास ने लिखा है और शिवराम ने इस गीत की धुन बनाई है।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है लागी नाही छूटे राम। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और तर्स है चित्रगुप्त का।

दिल ही तो है फिल्म का गीत। आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की यह आवाज़ थी। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा था और रोशन ने इस गीत की धुन बनाई थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: बोलो क्या, बोलो ना।
1: श्री 420 फिल्म का गीत आप अभी सुन रहे थे। उस गाने के पहले आपने जो गाना सुना था उसे हमने अनारी फिल्म से लिया था। लता मंगेशकर की और मुकेश की आवाज़ें थीं, शैलेंद्र ने बोल लिखे थे और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। अभी जो गीत आप सुन रहे थे इसे हमने श्री 420 फिल्म से लिया था। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें थी और हसरत जयपुरी ने बोल लिखे थे, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
5: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
6: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम का प्रसारण। इसे हम अपने आकाशवाणी सासाराम से रिले कर रहे थे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। जी हाँ श्रोताओं, हर सुबह देती है हमें एक नया पैगाम, हर सुबह देती है हमें एक नया पैगाम। तो उठिए, चलिए और पा लीजिए अपनी मंजिल को, क्योंकि हर दिन है एक नई शुरुआत का नाम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। और इसी के साथ चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जी हाँ, महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने कहा है कि हमें बीते हुए समय के लिए पछताना नहीं चाहिए और भविष्य को लेकर चिंतित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग हमेशा वर्तमान में जीते हैं।

और श्रोताओं, अब चलिए डालते हैं एक नज़र 1 जून के इतिहास पर। जी हाँ, 1 जून को क्या कुछ हुआ, ये डालते हैं सरसरी सी निगाह। तो आपको बता दें कि 1992 में आज ही के दिन भारत और इसराइल के बीच हवाई समझौता हुआ। अगर हम बात करें 1889 की, तो 1 जून को 1889 में दिल्ली और शिमला के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। 1972 में आज ही के दिन भारत के राष्ट्रीय टेलीविज़न नेटवर्क दूरदर्शन ने 1 जून 1972 से अपने प्रसारण का विस्तार करते हुए अमृतसर, लखनऊ, श्रीनगर, मुंबई और चेन्नई में अपनी सेवाएं पहुंचाईं। 2005 में कामी रीता शेरपा ने हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार सफल चढ़ाई आज ही के दिन यानी कि 1 जून को की थी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी सम्मेलन नई दिल्ली में आज ही के दिन यानी कि 1 जून को 2008 में संपन्न हुआ। 2010 में आज ही के दिन यानी कि 1 जून को अक्षरधाम आतंकी हमले के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। और अब थोड़ी सी जानकारी 1 जून को जन्मे विशेष शख्सियत के बारे में। तो आपको बता दें कि 1945 में आज ही के दिन महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय नौसेना के नाविक चिमन सिंह यादव का जन्म हुआ। 1958 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार का भी जन्म हुआ। 1 जून को 1939 में भारत के 34वें मुख्य न्यायाधीश एस राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ। भारतीय फिल्म अभिनेत्री जीहा नरगिस का जन्म भी आज ही के दिन यानी कि 1 जून को 1929 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी, जी हाँ, जिन्हें हम सब जानते हैं कि इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, इनका जन्म भी 1975 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय महिला क्रिकेटर राजेश्वरी गायकवाड़ का जन्म भी 1991 में आज ही के दिन यानी कि 1 जून को हुआ। और अब थोड़ी सी जानकारी 1 जून को दिवंगत यानी कि निधन हुए प्रसिद्ध शख्सियत के बारे में। तो बता दें आपको कि 1987 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का निधन हो गया। भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का निधन भी 1996 में आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से एक वाजिद खान का निधन भी 2020 में आज ही के दिन हुआ। और अगर आज के दिन के दिवस की बात करें हम, तो आपको बता दें कि आज 1 जून को पूरे विश्व में विश्व दुग्ध दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। और 1 जून के इतिहास के बाद अब आइए चलते हैं भक्ति संगीत की दुनिया में। सुनवाते हैं आपको जुबिन नौटियाल की आवाज में एक भक्ति रचना।

पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल की आवाज़ में ये भजन। इसे लिखा मनोज मुंतशिर ने था और संगीत था पायल देव का। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। नमस्ते रोहतास के इस अगले सेगमेंट में अब आइए चलते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की तरफ।

आज से रोहतास जिले के इंद्रपुरी बराज से सभी नहरों में छोड़ा जाएगा पानी। आगामी 5 जून से 7 जून तक डीपीएस में होगा 37वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप। आज 1 जून से इग्नू की परीक्षा शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय सासाराम में शुरू होगी। गौरतलब है कि यह संस्थान प्रमंडल का एकमात्र केंद्र है। यहां लगभग 25,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा होगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली संबंधी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्युत विभाग द्वारा पंचायतवार बिजली समाधान सहयोग शिविर की शुरुआत कल 2 जून को रोहतास जिला अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में आयोजित किया जाएगा।

आज 1 जून से इग्नू की परीक्षा शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय सासाराम में शुरू होगी। गौरतलब है कि यह संस्थान प्रमंडल का एकमात्र केंद्र है। यहाँ लगभग 25,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा होगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली संबंधी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्युत विभाग द्वारा पंचायतवार बिजली समाधान सहयोग शिविर की शुरुआत कल 2 जून को रोहतास जिला अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। रोहतास और कैमूर जिले में अब पंचायत स्तर पर बनेंगे खेल मैदान। बहुत जगह खेल मैदान बन भी चुके हैं और इन खेल मैदानों से अब निखरेंगी प्रतिभाएं। रोहतास जिले में प्राइवेट स्कूलों की आगामी 1 जुलाई से की जाएगी सघन जांच। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन 31 मई से 2 जून तक पूर्वी चंपारण मोतिहारी में होने जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए रोहतास जिला की ताइक्वांडो टीम सासाराम से रवाना हो चुकी है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल रोहतास जिले में जगह जगह पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां तथा अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। श्रोताओं, बिहार के खेल इतिहास में कल रविवार को एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। जी हां, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के रोहतास जिले के लाल पीयूष राज ने देश को गौरवान्वित किया ही है, साथ ही साथ बिहार राज्य और रोहतास जिला तथा सासाराम को भी गौरवान्वित किया है। पीयूष राज भारतीय पुरुष टीम में 4x400 मीटर रिले टीम में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 3:05:54 के समय के साथ नया मीट रिकॉर्ड बनाते हुए कांस्य पदक पर कब्जा कर लिए। पीयूष राज की यह उपलब्धि हासिल करने वाले बिहार के पहले एथलीट बन गए हैं। और आपको बता दें कि चीन ने 3:04:88 के साथ स्वर्ण और कतर ने 3:05:06 के साथ रजत पदक जीता है। इस उपलब्धि पर पीयूष राज को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक, बिहार ने एथलेटिक संघ के सचिव लियाकत अली ने और भी तमाम पदाधिकारियों ने गर्व की बात कहते हुए इन्हें सम्मानित करने के लिए भी घोषणा की है। और चलते चलते आपको बता दें मौसम के बारे में, तो बिहार में आंधी पानी से तो राहत मिली है, लेकिन फिर एक बार तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी के साथ राज्य के कुछ हिस्सों में गर्मी फिर असर दिखाएगी। 5 जून तक मौसम में कोई फेरबदल नहीं रहेगा, यानी आगामी मौसम 4 दिनों तक तापमान में वृद्धि की संभावना जता रहा है। और अब हम आपको चलते चलते एक गीत सुनवाते हैं। जी हाँ, ये गीत हमने चुना है धर्म करम फिल्म से, आवाज़ मुकेश की है, गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है आरडी बर्मन का।

एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो जी हाँ, मीठी बोली बोलते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी सासाराम के प्रसारण को। और फिलहाल आप सुन रहे हैं नमस्ते रोहतास कार्यक्रम। तो चलिए अब डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर नज़र। बता देते हैं आपको कि हिंदुस्तान अखबार ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है, कांवरिया पथ पर सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे, विक्रमशिला सेतु के टूटे हिस्से का निर्माण 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही एक और बड़ी खबर जो आई है वो है कि आईपीएल का फाइनल मुकाबला कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था, जिसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 विकेट से जीत लिया। यह रोमांचक आईपीएल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जिसमें आरसीबी ने गुजरात को हराकर अपना दूसरा आईपीएल खिताब हासिल किया।

बिहार में विधान परिषद की रिक्त होने वाली विधानसभा कोटे की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव को लेकर सोमवार को आज अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार 8 जून नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 9 जून को सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून तक नामांकन पत्रों की वापसी की अंतिम तिथि तय है। 18 जून को इन सभी सीटों के लिए मतदान होगा। मतदान के बाद चुनाव परिणाम जारी किए जाएंगे। ये सभी सीटें विधानसभा कोटे की सीटें हैं। दैनिक जागरण लिखता है कि सीबीएसई ने माना कि ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल में साइबर सुरक्षा से जुड़ी खामियां हुई हैं। 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का डाटा पब्लिक डोमेन में होने के दावों को किया गया है स्वीकार। रीचेकिंग और रीएवोल्यूशन के लिए विद्यार्थी आज से करेंगे आवेदन। रीएवोल्यूशन का ये पोर्टल 29 मई से खुला हुआ है। और दैनिक जागरण ने ये खबर भी प्रमुखता से छापा है कि रोहतास जिला के पीयूष राज ने 24 घंटे में जीते 2 पदक। जी हाँ, हमने आपको पहले भी बताया कि चीन के हांगकांग में आयोजित 22वीं अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में भारतीय अंडर 20 बालकों की 4x400 मीटर रिले टीम ने रविवार को कल मुकाबले में रोहतास जिले के यानी बिहार के पीयूष राज ने कांस्य पदक जीत लिया। बिहार का पहला एयरो सिटी होगा हरिहरनाथपुर। 11 टाउनशिप में 5 लाख को रोजगार। 20 गुना तक बढ़ेंगी कीमतें। एयरो सिटी और स्पोर्ट्स सिटी का होगा अनोखा संगम। सोनपुर में देश का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। टाउनशिप का सर्वे पूरा हो चुका है। जून में कंसल्टेंट बहाली होगी। परिवहन निगम की बसों में आज से 10-15% किराया बढ़ जाएगा। 8 जून से प्राइवेट बसों में भी नई दरें लागू हो जाएंगी। जनरल सुब्रमणि ने भारत के नए CDS का पदभार संभाल लिया। चीन और पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कल रविवार को देश के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। इन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल शनिवार को पूरा हो गया था। JEE एडवांस्ड का रिजल्ट आज। एडमिशन को रजिस्ट्रेशन कल से होगा। जी हाँ, JEE एडवांस का परिणाम IIT रुड़की की ओर से 1 जून को आज सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। यह परीक्षा 17 मई को पूरे देश में हुई थी। JEE मेन के आधार पर शीर्ष 2.50 लाख विद्यार्थी JEE एडवांस के लिए पात्र घोषित किए गए थे। इनमें 1.70 लाख यानी 1,70,000 से अधिक विद्यार्थियों ने JEE एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया।

था। रिजल्ट में विद्यार्थियों की कॉमन रैंक लिस्ट के साथ साथ कैटेगरी वाइज रैंक भी जारी की जाएगी। तो आज सुबह 10 बजे से आप जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट जान सकेंगे। गर्मी की छुट्टी में भी शिक्षकों को मुख्यालय में रहना होगा। जी हां, बिहार के शिक्षकों को जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, ग्रीष्मावकाश के दौरान भी अब शिक्षकों को आवश्यकता के अनुसार मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान भी विभागीय कार्यों और प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। विभागीय निर्देश के अनुसार राज्य के सरकारी विद्यालयों में 1 जून से 20 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित है और इसी अवधि में राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी है, जिसके मद्देनज़र बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग को ये निर्देश जारी किया है। और अब इसी के साथ चलते चलते आइए सुन लेते हैं एक और गीत।

शिल्पा राव की आवाज़ में अभी आपने लूडो फिल्म का ये गीत सुना और अब इसी के साथ कार्यक्रम नमस्ते रोहतास से मैं चाहती हूँ इजाज़त, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: suryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित

0: भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से

0: वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
2: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: .in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच दो गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार IPL चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ एक देशभक्ति गीत, जिसकी धुन बनाई आर्को ने और फिल्म है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया।

अरिजीत सिंह की आवाज़ से सजा हुआ ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना भूज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म से। और अब इसी के साथ हमारा आज का देशभक्ति संगीत प्रोग्राम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:20 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जो कि पत्रों पर आधारित है पसंद आपकी में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, इसी के साथ आप सभी के ढेर सारे खत भी हम तक पहुंच चुके हैं और इन पत्रों में शामिल करते हैं। आज ये पहला पत्र सरगुजा मैन 5 से आया हुआ। लिखने वाली हमारी श्रोता हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा। जेल रोड मथुरा से हमें ये खत लिखा वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार ने। ये पत्र आया है नोखा रोहतास जिला से। जी हाँ, ग्राम पोस्ट नोखा कोन। और यहाँ से लिखने वाले श्रोता हैं धनजी प्रसाद चौरसिया, गंगा सागर चौरसिया, सोनू कुमार चौरसिया, पिंकू कुमार चौरसिया और कान्हा कुमार चौरसिया। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश आई है मर्यादा फिल्म के गीत के लिए। और इसी के साथ लेते हैं बिहारी कॉलोनी लोनी के हमारे श्रोताओं का ये पत्र। आप सब हैं परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमार वली डोम और कुमारी डब्लू डोम, शंभू प्रसाद चौरसिया, राजू चौरसिया, गोलू चौरसिया, भरत प्रसाद चौरसिया, प्रभावती देवी और कुसुम देवी का पत्र आया है चांद भेलाडी ग्राम सिरहिर कैमूर से। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं मर्यादा फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत मस्त।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बादल फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल, जसविंदर नरूला और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। समीर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था और इस गीत को सुनना चाहा था थाना मोड़ गढ़नों का रोहता से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुल निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज ने। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से थे राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी। नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से हमें ये खत लिखा भाई कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। और धोली सकरा से ये खत आया है जयंत कुमार बैरागी का। तो आप सभी को हमने सुनवाया बादल फिल्म का ये गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में सुहाना सफ़र फिल्म का एक गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं,

आपको बता दें कि इस गीत की फरमाइश आई ब्रह्मपुरा मनीगाछी से अच्छेलाल रॉय, पानो देवी, मुकेश कुमार रॉय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार की तरफ से। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, रूबीना, परवीन, अरहान, हमजा, तैमूर, हुमैरा, सुमैरा, अबिया, शाहीन नाज, नूरी नाज, बच्चू और चीना, साथी हैं मुजम्मिल बाबू, कोकिलवारा और राय जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल सैक, नूजल जहां नाज, कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, कलेर बिहार से आप हैं मोहम्मद आसिफ खान, निखत प्रवीण, सदफ आरजू, साहिल अरमान, अजफर हामिद, तहमुइना मशकूर, शमा परवीन और नाहिद अख्तर। तो चलिए आप सबको सुनवाते हैं सुहाना सफ़र फिल्म का ये गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

और इसी गीत के साथ ही अब पसंद आपकी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज होगी अधिसूचना जारी। 18 जून को होगा मतदान। देश भर में उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान आज से हो रहा है शुरू। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारित किया, इनमें मधुमेह और हृदय रोग सहित कई दवाएं शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सारण, सिवान और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। इन सीटों पर चुनाव 18 जून को कराया जाएगा। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। गौरतलब है कि डॉ. कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। इधर आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को कराए जाने की घोषणा की है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधान परिषद चुनाव में एनडीए सभी 10 सीटों पर विजय हासिल करेगा।
1: उम्मीदवारों को लेकर जो है शीर्ष नेतृत्व में चर्चा हो रही है, उम्मीदवार तय मंथन किया जा रहा है, जल्द ही हम लोग सार्वजनिक करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने 5 सीट राज्यसभा का चुनाव जीते थे, उसी तरह 10 सीट जो है विधान परिषद का चुनाव जीतेंगे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कृषि बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी।
0: इधर पूरे प्रदेश में भी आज से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हो रही है। इस दौरान किसानों को कम खाद और हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। वंचित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ दिलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत पटना स्थित कृषि भवन से कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले के दौरान कांवरिया पथ पर सुरक्षा और सुविधा का व्यापक इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री भागलपुर समाहरणालय के सभागार में श्रावणी मेले की तैयारी और अन्य योजना की समीक्षा बैठक में कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही विक्रमशिला सेतु पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।
3: नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और स्कूल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पररी चालू हो और दूसरा, जब तक ये पुल चालू नहीं हो तो

0: प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो,
1: मान
0: उसको मुफ्त में इस तरफ से उस तरफ ले जाने की सारी व्यवस्था सरकार के।
2: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने आम लोगों को राहत देते हुए 30 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतें निर्धारित कर दी हैं। इन दवाओं में विटामिन D3, कैल्शियम, मधुमेह और हृदय रोग के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के साथ साथ अंग प्रत्यारोपण के बाद दी जाने वाली महत्वपूर्ण दवाएं भी शामिल हैं। प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्धारित कीमतों में वस्तु और सेवा कर यानी GST शामिल नहीं है। एनपीपीए ने स्पष्ट किया है कि दवाओं की कीमत में GST तभी जोड़ा जा सकता है जब संबंधित कर का भुगतान सरकार को किया जा चुका हो या उसका भुगतान देय हो। सरकार का कहना है कि आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मरीजों को उचित दर पर दवाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती बनाना है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत्ति की निकटता वाले 275 पुलिस कर्मियों का ऐच्छिक तबादला किया है। इन पुलिस कर्मियों में 5 इंस्पेक्टर, 176 SI, 42 ASI, 54 हवलदार और 6 सिपाही शामिल हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक के अनुसार सेवानिवृत्ति में 2 साल से कम अवधि वाले कर्मियों को गृह जिला और ऐच्छिक स्थानांतरण संबंधी आवेदनों पर विचार किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बक्सर में महाराणा प्रताप जयंती पर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने युवाओं से महाराणा प्रताप के जीवन से सीख लेने की अपील की। इस अवसर पर विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, विधायक आनंद मिश्रा, संतोष निराला और राहुल सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले सहित उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है।
4: दिनांक 1 जून उत्तर पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
2: इधर राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा है कि वो अपनी सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। IIT रुड़की ने JEE एडवांस 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में गया जी के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर कॉमन रैंक लिस्ट

में पहला स्थान प्राप्त किया है। शुभम गया जी के नारदगंज ब्रह्मनी घाट के निवासी हैं। उन्होंने जेई मेंस के दोनों सत्रों में 100% प्राप्त किए थे। इस परीक्षा में 56,880 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली जोन के कबीर छिल्लर हैं। वहीं जतिन चाहर 319 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। औरंगाबाद जिला परिषद की सदस्य नीतू सिंह को 3 जून को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें अपने क्षेत्र में किए गए प्रभावी कार्यों और ग्रामीण विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आगामी 5 जून को पटना चिड़ियाघर द्वारा बच्चों के लिए चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार बच्चे अपने घर से ही प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को पर्यावरण विषय पर चित्र या पोस्टर बनाकर ऑनलाइन पोर्टल patnazoodigital@gmail.com पर अपलोड करना होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र निर्धारित तिथि तक अपने चित्र और पोस्टर ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। पटना चिड़ियाघर ने अधिक से अधिक बच्चों से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की है, ताकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश व्यापक स्तर तक पहुंच सके। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस ने रामनगर थाना क्षेत्र के 3 दुकानों से भारी मात्रा में लॉटरी और कैश के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र में सोन नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि नदी में अवैध बालू उठाव के कारण बने गहरे गड्ढे में डूबने से यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी दीदारगंज घाट पर गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 1 बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली के साकेत के सेदुला जवाब इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरने से बिहार के 2 अभियंताओं की मौत हो गई। इनमें 1 अभियंता नवादा के और दूसरा मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतास के पीयूष राज ने रिले रेस में कांस्य पदक प्राप्त किया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले बिहार के पहले एथलीट बने हैं। भारतीय पुरुष टीम में पीयूष राज के साथ सैयद कबीर, रंजीत कुमार एस, मोहम्मद अशफाक मौजूद थे। इन्हें सभी ने 4x400 मीटर रिले टीम में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये उपलब्धि हासिल की। कटिहार में आयोजित बिहार राज्य अंडर 13 शतरंज प्रतियोगिता में सारण की मोहिनी पंडित और पटना के देवांश केसरी चैंपियन हुए। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए, जिसके जवाब में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने 18 ओवर में लक्ष्य को प्राप्त किया। इधर राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चयन किया गया। उन्होंने सबसे अधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जर्दालू आम और सत्तू की प्रशंसा की। अखबार लिखता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आज भेजा जाएगा जर्दालू आम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीबीएसई ने स्वीकारी ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल में सुरक्षा खामी। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार की पहली एरो सिटी होगा हरिहरनाथपुर, 11 टाउनशिप में 5 लाख को रोजगार मिलेगा। प्रभात खबर ने टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार ठेकेदार ऋषुश्री से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बढ़े बिलों से फिक्स होता था 10% कमीशन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज होगी अधिसूचना।

जारी 18 जून को होगा मतदान। देश भर में उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान आज से हो रहा है शुरू। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारित किया, इनमें मधुमेह और हृदय रोग सहित कई दवाएं शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सारण, सिवान और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:09 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण में आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद 9:10 पर आप सुनिएगा गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। 9:30 पर लिए चलेंगे आपको आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र कार्यक्रम आज के फनकार के लिए। सुबह 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे हिंदी समाचार। घूमता माइक्रोफोन ये साप्ताहिक कार्यक्रम आज आप सुनेंगे सुबह 10:05 से 10:30 तक। इस कार्यक्रम में संकलन एवं वाचन होगा अख्तर इमाम अंजुम का और विषय होगा शेरशाह महोत्सव कार्यक्रम संकलन प्रस्तुति। सुबह 10:30 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का। 10:45 पर रसधार कार्यक्रम में हम सुनवाएंगे आपको कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। सुबह 11 बजे से आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र कार्यक्रम रंग तरंग के लिए। अपराह्न 12 बजे से आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे हिंदी समाचार। अपराह्न 12:05 से अपराह्न 2 बजे तक आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती की गीत मालिका। अपराह्न 2 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार। 2:05 पर इलाकाई खबरें और 2:10 पर रोजगार सूचना। हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मध्याह्न समाचार हम रिले करेंगे अपराह्न 2:15 पर। अपराह्न 2:30 से शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण जिसे हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। शाम 5:05 पर एक बार फिर आप झलकी लेंगे आज के कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:10 पर सुनिएगा वंदन कार्यक्रम में कुछ भक्ति संगीत। शाम 5:30 का समय होगा घर आंगन कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे माता पिता का आदर और देखभाल हमारी है जिम्मेदारी, गर्मी में और लू में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें, साथ ही दूध हर उम्र में जरूरी है इस विषय पर जानकारी। संकलन एवं वाचन होगा कुसुम कौर का। शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम। 6:05 पर सुनिएगा आकाशवाणी पटना से भोजपुरी बुलेटिन। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण। गांव घर कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चर्चा माता पिता का हमारे जीवन में महत्व। गांव घर कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे दूध हमारे लिए है कितना आवश्यक, जी हां विश्व दुग्ध दिवस पर ये विशेष जानकारी। और आज के गांव घर कार्यक्रम के वाचक होंगे ददन प्रसाद सिन्हा। 6:40 पर

सुनेगा सांझीत कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। 7:15 पर सुनिएगा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। 7:25 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार। 7:50 पर आप सुनेंगे ई मनपसंद कार्यक्रम में अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत। 8:45 पर सुनवाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। रात 9 बजे आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत। 9:15 पर बंदगी में नाल और 9:30 पर आकाशवाणी विविध भारती से सुनेंगे आप कार्यक्रम आज के फनकार। सुबह 10 बजे आप सुन रहे थे, जी हाँ, आज सुबह 10 बजे घूमता माइक्रोफोन। और रात के 10 बजे आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग। रात 10:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान हम लेकर आएंगे रात 10:55 पर। रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम रिले करेंगे। हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी रात 11:10 पर। तो ये था कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में अभी आप जानकारी ले रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 9:14 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मालिका। जी हाँ, गीत मालिका कार्यक्रम हम लेकर आए हैं आज दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर पर आधारित। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि बॉलीवुड यानी हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का कल 31 मई 2026 की शाम मुंबई महाराष्ट्र में उनके लोखंडवाला स्थित आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं और बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थीं। हम आपको बताना चाहेंगे कि सुमन कल्याणपुर भारतीय संगीत जगत की एक बेहद ही अमूल्य हस्ती थीं। इन्होंने 1960 और 1970 के दशक में अपने गाए गीतों से काफ़ी प्रसिद्धि बटोरी थी और इन्होंने कई गीत गाए हैं जो कि खुद अकेले भी गाया है और डुएट भी गाया है। तो उन्हीं में से कुछ चुनिंदा गीत आज हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवाने वाले हैं। और सबसे पहले इनका गाया एक सदाबहार गीत जो हमने चुना है, दिल ही तो है, इस फिल्म से। साहिर का लिखा हुआ गीत, रोशन का संगीत और आवाज़, जी हाँ, सुमन कल्याणपुर की। तो आइए इस गीत के माध्यम से हम इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं।

यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई है बस एक बहाना। बेहद ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना सुमन कल्याणपुर जी के स्वर में। जी हाँ श्रोताओं, आपको बता दें कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर का कल रविवार को शाम में निधन हो गया। और आपको बता दें कि 1960 और 70 के दशक में सुमन कल्याणपुर जी की सुरीली आवाज़ सभी जगहों पर छाई रहती थी। इनकी आवाज़ का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। और ये तब की बात है जब स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में छाई हुई थी, लेकिन इसी दरमियान इन्होंने अपनी बेहतरीन गायकी के दम पर न सिर्फ इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि इंडस्ट्री में अपना एक ख़ास मुकाम भी हासिल किया। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है और हम सब भारतीयों के लिए, पूरे संगीत जगत के लिए ये बेहद ही गमजदा खबर है और हम लोग मरमाहत हैं। और सुमन कल्याणपुर जी ने पद्म भूषण भी पाया था। जी हाँ, लता मंगेशकर सम्मान भी इन्होंने पाया था और भी कई ढेर सारे पुरस्कार इन्हें दिए गए थे। और न सिर्फ ये हिंदी फिल्म गायकी में आगे रहीं बल्कि मराठी फिल्मों में भी इन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं, साथ ही कई अन्य भाषाओं में भी इन्होंने अनेकों गीत गाए। फिलहाल हम आपको एक और हिंदी गीत सुनवाते हैं इनकी आवाज़ में, बात एक रात की। इस फिल्म से मजरूह की शब्द रचना है, एस डी बर्मन का संगीत है।

न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। जी हाँ, ये दिल का सदाबहार गीत अभी आप सुन रहे थे गायिका सुमन कल्याणपुर की सुरीली आवाज़ में। और श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का हमारा यह गीत मालिका कार्यक्रम सुमन कल्याणपुर पर आधारित है, क्योंकि कल 31 मई को इस दिग्गज गायिका का 89 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने लोखंडवाला स्थित अपने आवास पर कल अंतिम सांस ली। पद्म भूषण से सम्मानित इस सिंगर के जाने से भारतीय संगीत जगत और हम सभी फैंस के बीच में शोक की लहर है। तो चलिए हम इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं और सुनते हैं इनकी फिल्म का एक और गीत, राजकुमार। जी हाँ, इस फिल्म से ये गीत हमने चुना। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है और सुमन कल्याणपुर के साथ इस गीत में डुएट में हैं मोहम्मद रफ़ी साहब।

तुमने पुकारा और हम चले आए। जी हाँ, इस गीत की गूंज अब भी है बाकी, इस जादुई आवाज़ के बिना, लेकिन संगीत की ये दुनिया अब सुनी हो गई। सुमन कल्याणपुर की आत्मा को ईश्वर शांति दे, बस यही हम प्रार्थना करते हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारतीय संगीत के स्वर्णिम दौर को अपनी मखमली आवाज़ से सजाने वाली सुमन कल्याणपुर हमेशा हमारे हृदय में, हमारे दिलों में, हमारे संगीत जगत में यूं ही रची बसी रहेंगी। उनके तराने इस फिजा में यूं ही गुनगुनाए जाएंगे। इसी के साथ अब हमारा आज का यह गीतमालिका कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज के फनकार हैं सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर की ये विशेषता भी है और अभिशाप भी कि उनकी आवाज़ लता मंगेशकर से मिलती जुलती है। कई बार बड़े बड़े दिग्गज भी धोखा खा जाते हैं सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की आवाज़ में फ़र्क करने में।

सरगम के अथाह सागर में डूबकर गीतों के सच्चे मोती तलाशने की धुन जिन्हें रही है, वे सुमन कल्याणपुर के गीतों के शौकीन जरूर रहे हैं। सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक अल्हड़पन है, शोखी है और चंचलता है, और है देसीपन जो हर श्रोता को अपनी ओर आकृष्ट करती है।

0: में चाहे प्यार की गहराई हो या पश्चिमी धुन पर थिरकता शरारती गीत या फिर शास्त्रीय संगीत का लोच हो, हर तरह से खरी उतरती है उनकी आवाज। है
1: मन मेरा तुझको मांगे, दूर दूर तो भागे, मन मेरा तुझको

सुमन कल्याणपुर के हिंदी फिल्मी गायन का सफर शुरू हुआ फिल्म मंगू से। बोल थे कोई पुकारे धीरे। इसके संगीतकार थे मोहम्मद शफी। इसके पहले उन्होंने बहुत सारे मराठी गीत गाए थे। फिल्म मंगू से जब सुमन कल्याणपुर ने फिल्मी गीतों के विशाल आंगन में कदम रखा तो छत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी सीढ़ियां तलाशनी पड़ी। काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज उनकी आवाज को पसंद करने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है।

सुमन कल्याणपुर अपने विवाह के पूर्व सुमन हेमाड़ी के नाम से गाती थी। उनका जन्म 28 जनवरी सन 1937 को बंगाल के ढाका में हुआ था, लेकिन संगीत की विधिवत शिक्षा उन्होंने मुंबई में हासिल की। आइए सुने सुमन कल्याणपुर की गाई एक है दुलार है स्नेह है और है सूरज की रश्मियों की तरह फैल जाने वाली रोशनी।

कल्याणपुर के गाए गीतों की ये खासियत है कि उनके गीत हर लोगों के जुबान हैं। प्रेम की गहराई में डूबा मन हो या किसी के विछोह में आकुल मन, किसी का इंतजार हो या किसी से मिलन की घड़ी, हर ऐसे वक्त में सुमन कल्याणपुर के गाए हैं। हर ऐसे वक्त में उनकी जिंदगी से जुड़ जाते हैं सुमन कल्याणपुर के गाए गीत।

0: आपके साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35

0: नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोक भवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था और इस विस्तार के साथ ही राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तथा तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप हिंदी समाचार सुन रहे थे, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे सासाराम केंद्र से प्रसारित साप्ताहिक कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन। इस कार्यक्रम में आज का विषय है शेरशाह महोत्सव। आज संकलन और वाचन है अख्तर इमाम अंजुम का।
2: घूमता माइक्रोफोन कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन के सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को अख्तर इमाम अंजुम का नमस्कार। दोस्तों, हम आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अनेक पर्यटक स्थल हैं, जिसमें हमारे बिहार में मुख्य रूप से रोहतास ज़िला में भी कई पर्यटक स्थल हैं, जहां सैलानियों की भीड़ तो लगती है, मगर वर्तमान की कुछ युवा पीढ़ी नहीं जानती कि उसका इतिहास कितना गौरवशाली है। महान भारतीय शासक शेरशाह सूरी ने पूर्व में 5 वर्ष अपनी शासन सत्ता चलाई, जिसमें कई महत्वपूर्ण कार्य किए। आज भी जनता काफ़ी सराहती है। GT रोड निर्माण, डाक व्यवस्था, सिक्कों का प्रचलन, सायादार वृक्ष का लगाया जाना या अन्य कई व्यवस्थाएं, साथ ही धरोहरों का निर्माण, जो आज भी सभी के मन मस्तिष्क को लाभ देता है एवं रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, जिसके विकास सौंदर्यीकरण के लिए भारत एवं राज्य सरकार भी कृत संकल्पित है। हमारे सासाराम में स्थापित शेरशाह सूरी मकबरा के प्रति सक्रियता दिखाते हुए पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन रोहतास पिछले कई वर्षों से शेरशाह महोत्सव मना रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि नई नस्ल हमारे गौरवशाली इतिहास को समझ सके। इसी मद्देनज़र दिनांक 21 एवं 22 मई को भी सासाराम स्थित फजलगंज स्टेडियम में 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसका संयुक्त उद्घाटन पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार कुमार शैलेंद्र, जिला अधिकारी रोहतास उदिता सिंह, विधान पार्षद निवेदिता सिंह, डिहरी विधायक राजीव रंजन सिंह, उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे, SDM सासाराम डॉक्टर नेहा कुमारी ने किया, जहां उन्होंने

0: शेर शाह सूरी के बारे में प्रकाश डाला। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन के साथ सेमिनार, मुशायरा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर हुई रील प्रतियोगिता में आकांक्षा सिंह को प्रथम, आशीष राज को द्वितीय एवं प्रतिमा कुमारी को तृतीय पुरस्कार मिला। सेमिनार में डॉक्टर जावेद अख्तर, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर ए के अलवी, डॉक्टर जंग बहादुर पांडे, अली हुसैन इदरीसी, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद एवं जीएम अंसारी ने अपना आलेख प्रस्तुत किया। मुशायरा सेमिनार की अध्यक्षता डॉक्टर गुरुचरण सिंह ने की एवं संचालन मतीन सहस्रामी ने किया। मुशायरा में उपस्थित कवि शायरों में अहमद आजमी, सरोज कुमार पंकज, अख्तर इमाम अंजुम, तरन्नुम नाज फतेहपुर, आलम परवेज, चकाचौंध ज्ञानपुरी, हसन इमाम, पूनम श्रीवास्तव, मिर्जापुर बिरजू राम एवं निजाम बनारसी ने अपनी कविता शायरी से श्रोता को मंत्रमुग्ध किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर्षप्रीत कौर गायन, साकार कला दीप शिखा डांस, कुमार सत्यम गजल प्रस्तुति, आनंद तिवारी, मोनी झा, उत्तम मिश्रा, तानिया मवार, विकास पांडे एवं साबरी ब्रदर्स के गायन ने ऐसा समा बांधा कि श्रोता देर समय तक मनोरंजन लाभ लेते रहे। सर्वप्रथम आइए सुनते हैं आकांक्षा सिंह की प्रस्तुति।
1: सुनिए बिहार की उस शख्सियत की कहानी जिसने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपनी दूरदर्शिता, प्रशासनिक क्षमता और अद्भुत रणनीति से भारत का इतिहास बदल दिया। यह कहानी है शेरशाह सूरी की। बिहार के सासाराम में पले बड़े फरीद खान बचपन से ही बेहद साहसी और तेज बुद्धि के थे। एक बार उन्होंने अकेले ही एक खूंखार बाघ का सामना किया और उसे मार गिराया। उनकी इस बहादुरी से प्रभावित होकर उन्हें शेर खान कहा जाने लगा। यही शेर खान आगे चलकर इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से अमर हुए। वर्ष 1539 में चौसा और फिर 1540 में कन्नौज की लड़ाई में उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता हासिल की। इसके बाद सूरी वंश की स्थापना हुई और भारत की राजनीति पूरी तरह बदल गई। हालांकि शेरशाह सूरी का शासन केवल 5 वर्षों तक रहा, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। उन्होंने सड़क ए आजम का निर्माण कराया जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। यह सड़क बंगाल से लेकर पेशावर तक जाती है। यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह सराय, कुएं और डाक चौकियां बनवाई गई। आज हम जिस रुपए का इस्तेमाल करते हैं उसकी शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने ही की थी। उन्होंने किसानों के लिए नई राजस्व व्यवस्था लागू की और प्रशासन को मजबूत एवं जवाबदेह बनाया। वर्ष 1545 में कालिंजर किले पर हमले के दौरान बारूद विस्फोट में शेरशाह सूरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनका निधन हो गया। आज सासाराम में स्थित उनका भव्य मकबरा उनकी महानता और दूरदर्शिता की कहानी कहता है। विशाल तालाब के बीच बना यह मकबरा दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास कराता है। शेरशाह सूरी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा शासक यही होता है जो सिर्फ सत्ता हासिल नहीं करता बल्कि जनता के बेहतर भविष्य के लिए काम करता है।
0: मुशायरा के शायरों में तरन्नुम नाज की प्रस्तुति की एक झलक।

पूनम श्रीवास्तव अपने अंदाज में कुछ यूं रही।

0: अख्तर इमाम अंजुम ने अपनी नगरी का कुछ यूं किया गुणगान।
1: वो शेर जिसने हिंद की सरकार

0: सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुमार सत्यम के अंदाज कुछ यूं थे।
1: बेवफा।

शेर शाह सूरी महोत्सव में साबरी ब्रदर्स की उपस्थिति ने सासाराम की प्रतिष्ठा में भी चार चांद लगा दिया। श्रोता की खचाखच भीड़ कार्यक्रम स्थल से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी एवं सभी उनकी सूफी कव्वाली से शराबोर हो रहे थे। आइए सुनते हैं उनकी भी प्रस्तुति।

0: तो श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे दिनांक 21 एवं 22 मई को सासाराम स्थित फजलगंज स्टेडियम में 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव कार्यक्रम प्रस्तुति की मुख्य झलक। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उठाइए कलम और लिख भेजिए एक पत्र। हमें रहती है प्रतीक्षा आपके पत्र की। हमारा पता है कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115, और दीजिए यहीं से अख्तर इमाम अंजुम को अनुमति। स्वर एवं संकलन अख्तर इमाम अंजुम, प्रस्तुति सहयोग संतोष कुमार।
1: घूमता माइक्रोफोन, ये साप्ताहिक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 10:27 हुए हैं और सुबह 10:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम लोक माधुरी। फिलहाल आइए लेते हैं ये छोटा सा अंतराल।

श्रोताओं, अभी गर्मी काफ़ी है और लू का भी प्रकोप जारी है, तो अगर किसी को लू लग जाती है तो आप सबसे पहले लू लगे हुए मरीज को शरीर पर ठंडे पानी के सूती कपड़े से पोछें। जी हाँ, उसके शरीर को ठंडे पानी के सूती कपड़े से पोछें, उसके माथे पर ठंडी बर्फ भरी पोटली रखें। मरीज के शरीर पर कसे हुए या भारी कपड़े ना हों, इसका ध्यान रखें। मरीज को सूती ढीला कपड़ा ही पहनाएं ताकि उसके शरीर में हवा लगे, और पूरी तरह से अगर मरीज होश में नहीं आ रहा है तो उसे तुरंत ही नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। वैसे मरीज को लू लगने पर थोड़ी थोड़ी देर में ठंडा पानी, शरबत, आम का पन्ना, नारियल पानी वगैरह, ठंडी चीज़ें, ठंडे पेय पदार्थ पिलाते रहें, और अगर मरीज बेहोश हो चुका है तो उसे तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जरूर ले जाएं, क्योंकि लू का प्रकोप कई बार खतरे की घंटी होता है और जान जाने की भी संभावना बन जाती है। और जब भी आपको लू लगे, तेज़ बुखार हो, लगातार उल्टी आए, दौरा पड़े या बेहोशी जैसी समस्या हो जाए, तो बिना देर किए अपने नज़दीकी अस्पताल जल्द से जल्द जाएं।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हो रहे हैं। लोकमाधुरी कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको स्नेहलता की आवाज़ में सुभाष कन्नौजिया का संगीतबद्ध किया हुआ एक भोजपुरी एल्बम लोकगीत, और ये एक पारंपरिक भोजपुरी एल्बम लोकगीत है। तो आइए सुनते हैं स्नेहलता की आवाज़ में।

स्नेहलता की आवाज़ में अभी आपने ये पारंपरिक भोजपुरी एल्बम लोकगीत सुना। संगीत सुभाष कन्नौजिया का था और लोकमाधुरी कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए एक और पारंपरिक भोजपुरी एल्बम लोकगीत, जिसकी धुन बनाई भरत शर्मा व्यास ने है, आवाज़ गोपाल रॉय की है और एल्बम है करी हम कौन बहाना।

चलली सजनवा दुआर। अभी आप सुन रहे थे गोपाल राय की आवाज़ में ये पारंपरिक भोजपुरी एल्बम लोकगीत। और अब इसी के साथ ही लोक माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:45 हो रहे हैं। रसधार कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। और भोजपुरी एल्बम सॉन्ग में सुनवाते हैं आपको रितु रॉय की आवाज़ में पिया मधुसूदन का लिखा हुआ एक भोजपुरी एल्बम सॉन्ग, जिसकी धुन बनाई शेखर शर्मा ने है और एल्बम का नाम है पूछे भारत कैकई माई से।

ऋतु रॉय की आवाज़ में अभी आपने सुना पिया मधुसूदन का लिखा हुआ ये एल्बम सॉन्ग, जिसे संगीत से संवारा था शेखर शर्मा ने। और अब इसी के साथ रस्तार कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए नील कमल सिंह की आवाज़ में खनकता हुआ ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। जी हाँ, इस खूबसूरत से सॉन्ग को लिखा है रवि चौहान ने और संगीत दिया है जयदीप वर्मा ने।

फिल्म की हीरोइन। जी हाँ, इस एल्बम में अभी आपने सुना नीलकमल सिंह की आवाज़ में ये बेहद ही दिलकश गीत। लेकिन श्रोताओं, हम आपसे कहना चाहेंगे कि चेहरे की सुंदरता पर कभी मत जाइएगा, क्योंकि ये उम्र के साथ बदल जाती है। विचारों की सुंदरता होनी चाहिए जो कि मन में सदा बनी रहती है। खैर, सुंदरता तो हर सुंदर चीज़ बस हमें अपनी ओर खींचती है, और आकाशवाणी सासाराम का ये केंद्र भी आप सभी को अपनी ओर खींचता है। तो सुनते रहिए आकाशवाणी सासाराम। फिलहाल आइए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी के साथ रागिनी आप सभी से चाहती है इजाज़त। नमस्कार।

फिल्म सावी का ये गाना आप सुन रहे थे। जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में रश्मि विराग के बोल थे और जावेद मोहसिन का संगीत था। और अब सुनवाते हैं मिताली सिंह का गाया हुआ ये गाना माधोलाल की वॉकिंग फिल्म से। सानिया असलम के बोल हैं और नायाब राजा का संगीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: रंग तरंग कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम राजकुमार रिजवी की आवाज में। बेनी सतमकर का संगीत है।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

मिताली सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे कतील राजस्थानी का कलाम, और अब आपको सुनवा रहे हैं ये गज़ल राजकुमार रिज़वी की आवाज़ में।

0: राजकुमार रिजवी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया हुआ ये गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोकभवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री

0: आंधी और तूफान, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फारूक कैसर के बोल थे और रॉबिन बैनर्जी का संगीत था। और अब ये संदेश और उसके बाद एक और गीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आपस की बात का गाना। सुमन कल्याणपुर के स्वर में अनजान के बोलों को संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।
4: तुम्हें क्या सेवा कर सकता हूँ?
5: सेवा के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे एक निहायत स्पेशल किस्म का बुके चाहिए।
4: स्पेशल बुके? लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए?
5: इससे आपको मतलब?
4: जी मुझसे तो नहीं, लेकिन फूलों का फूलों से मतलब है। आई मीन हर फूल हर जगह नहीं भेजा जा सकता।
5: जी
4: जी हाँ, रंग और खुशबू का अपना एक मिजाज होता है, उसका एक करेक्टर होता है। फूलों में भी सनाना और मर्दाना फूल हुआ करते हैं। अब देखिए ना, मर्दों को सनाना और औरतों को मर्दाना फूल भेज जाते।
5: समझ गए, ये बुके एक लड़के के लिए है।
4: ओह दैट्स फाइन। अच्छा ये बताइए कि वो लड़का आपको क्या लगता है? देखते बुरा मत मानिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर वो भाई है तो फूल अलग होंगे और वो फ्रेंड है तो फूल दूसरे होंगे। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ?
5: सेवा के बारे में बात।

0: अनजान का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म आपस की बात का ये गाना आपने सुना, आवाज सुमन कल्याणपुर की थी।
1: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: यह फिल्म अली बाबा और 40 चोर का गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ।

अंदाज फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा का गाया हुआ। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था, जिसे संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चालाक का ये गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत है।

फिल्म अनजाना का ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल थे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

देखो देखा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा बना।

0: पीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा पपीहा देखो देख।
1: सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गाना आपने सुना फिल्म फरियाद से। बोल केदार शर्मा के थे और संगीत था स्नेहल भाटकर का। और अब आपको सुनवा रहे हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मेरी सूरत तेरी आंखें, फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में। शैलेंद्र की शब्द रचना है और संगीत है सचिन देव बर्मन का।

यादों के महफिल कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं नूर महल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल सबा अफगानी के हैं और संगीत है जानी बाबू कव्वाल का।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की बात और इस कार्यक्रम के गीत होते हैं बहुत खास, और आज भी कुछ ऐसी ही बात है, ऐसा ही कार्यक्रम है। तो चलिए ना एक सुरीले सफर पर हमारे साथ। इस सुरीले सफर में आज की जो इबारत है वो हम बता देते हैं, खासतौर से उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी नहीं देखा है फेसबुक पर इस इबारत को। इबारत कुछ इस तरह से है, उनका प्यार नहीं बटता चाहे दुनिया एक बटा दो हो जाए। वो सिखाते हैं गगन में उड़ते मस्त पंछी की तरह जीना, रोते रोते हंसना, दिल की गिरह खोल कर बाहर से अंदर तक दुनिया को समझना। उनके होठों पर बड़ा नाम करेगा या राज करेगी जैसी दुआएं रहती हैं, मुड़ के ना देखो या चुनरी संभालो जैसी उनकी हिदायतें जिंदगी भर साथ रहती हैं, याद रहती हैं। याद आती हैं उनकी सुनाई हंसों की कहानी, और गुजरते जाते हैं दिन महीने साल, हम सीख जाते हैं साथी का साथ देना। खुश रंग हिना की खुशबू लेकर डोलती पवनिया से दिल का संदेश कहना, उनका हाथ लगते ही बिगड़ता काम बन गया है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? वैसे आखिरी लाइन तो एक हिंट थी आपको ये जानने के लिए कि देखिए आज आपने इस कार्यक्रम की क्या बातें होने वाली हैं उन्हें समझा है या नहीं, या ये इबारत की शोर इशारा कर रही है। और बेहद खुशी की बात है कि हमारे सभी श्रोताओं ने जल्दी से जल्दी इस थीम को पहचान लिया। हाँ, आज विश्व अभिभावक दिवस है और इसीलिए बातें हो रही हैं उन अभिभावकों की, माता पिता की, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ऐसा हमारे एक साथी कह रही हैं, सच कहूँ तो माँ पापा का प्यार ऐसा खजाना है जिसकी कीमत कभी नहीं लगाई जाती। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी माँ पापा का प्यार हमारे साथ खड़ा रहता है। उनकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। उनके जैसा चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। माँ पापा का प्यार शब्दों में नहीं बल्कि उनकी हर चिंता, हर दुआ और हर त्याग में दिखाई देता है। क्या बात है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आज के कई गाने हम समझ गए हैं और वो गीत हम विविध भारती पर सुनते भी रहते हैं, पर बताएंगे नहीं। जो गीत सही होगा उस समय बता देंगे, सच ही कहेंगे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हमारी प्यारी सी उद्घोषिका के साथ एक सखी भी हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अनमोल दोस्ती होती है ये, जब इस तरह से हम बात शुरू करते हैं और हम जो कहते हैं वो आप झट से समझ लेते हैं। हमारे साथियों ने बताया है कि वो तमाम गाने बताए हैं जिन पर आज की ये इबारत रची गई है, और कुछ साथियों ने ये भी कहा है कि सारे गाने तो इबारत में ही छुपे हैं और एक एक गाना उनको समझ में आ गया है। क्या बात है। तो भाई ये गाना आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज आपकी पसंद के सारे गाने आ रहे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश को बहुत ही सुंदर भावों से सजाया है और शब्दों के चित्रण में माता पिता के ममत्व की सुमधुर खुशबू को पसारा है। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। प्यार, ममता और अपनत्व का पूरा संसार आज रच दिया है। दो पंक्तियां साझा करूंगा, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, आते ही लबों पर मुस्कान और आंखों में नमी छा जाती है। वाह, क्या बात।

एक और श्रोता कह रही हैं कि कहीं पढ़ा था बच्चे को माँ 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपनी बाहों में 3 साल और अपने हृदय में तब तक जब तक कि खुद उसकी मृत्यु ना हो जाए। पिता के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि बचपन से पिता से एक अव्यक्त दूरी अपने आप बन जाती है, मगर पिता का हृदय बच्चे के लिए एक पाठशाला की तरह है। बच्चा समुद्र की गहराई में ना डूबने पाए, इसके लिए पिता तमाम जतन जीवन भर करते रहते हैं और उनकी छवि एक कड़क पिता के रूप में बच्चों के हृदय में दर्ज हो जाती है। मगर पिता के सीने में भी एक नाजुक दिल धड़कता है। मंगल नसीम की लिखी कुछ पंक्तियां यहां साझा कर रही हूं। क्या सीरत क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पांव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। बहुत सुंदर। एक और संदेश है कि आज की भारत में माता पिता के प्यार की खुशबू महक रही है। वात्सल्य और सुसंस्कारों का संतुलित जीवन रस लेकर उनके बच्चे खुशी से फूले फले, ऐसी उनकी मनोकामना होती है। निस्वार्थ भाव से वो अपनी संतान को आधार और सुरक्षितता देते रहते हैं। उनके प्रेम की गहराई कभी मापी नहीं जाती। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं और मुझे लग रहा है कि आज इनकी पसंद बिल्कुल हमसे ही मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी बढ़ता नहीं बल्कि हर परिस्थिति में संतान के साथ खड़ा रहता है। वे हमें जीवन की कठिनाइयों में मुस्कुराना और सही राह पर चलना सिखाते हैं। उनकी दुआएं, सीख और हिदायतें उम्र भर हमारा संबल बनी रहती हैं। उनके स्नेहिल स्पर्श में ऐसा विश्वास होता है कि बिगड़े काम भी बन जाते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अनमोल छाया है जिनकी याद, सीख और प्रेम हर दिन हमारा मार्ग रोशन करते हैं। बहुत सुंदर लिखा आपने। और अब हम सुनवा रहे हैं ये गाना, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और हाँ आवाजें किनकी हैं।

बिल्कुल सही जवाब आ गया। फिल्म कालीचरण का गाना अनुराधा पौडवाल, कंचन और साथियों की आवाजें, और ये भी बता दिया हमारे श्रोताओं ने, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिया है, प्रेमनाथ जी का नाम भी लिया है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि त्याग और समर्पण की सराहना, माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करते हैं, ये दिन उनके इसी निस्वार्थ भाव को मान्यता देने के लिए है। प्रथम गुरु माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, वे ही बच्चे को संस्कार और जीवन जीने के सही मूल्य सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं, काफ़ी बड़ा सा लंबा सा मैसेज है, हम छोटा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अमूल्य छाया हैं जिनके स्नेह, त्याग और आशीर्वाद से

लाल कंचन और साथियों की आवाजें, और ये भी बता दिया हमारे श्रोताओं ने, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिया है, प्रेमनाथ जी का नाम भी लिया है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि त्याग और समर्पण की सराहना, माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करते हैं, ये दिन उनके इसी निस्वार्थ भाव को मान्यता देने के लिए है। प्रथम गुरु माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, वे ही बच्चे को संस्कार और जीवन जीने के सही मूल्य सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं, काफ़ी बड़ा सा लंबा सा मैसेज है, हम छोटा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अमूल्य छाया हैं जिनके स्नेह, त्याग और आशीर्वाद से हमारा जीवन संवरता है। उनका प्यार कभी नहीं बटता, उनकी दुआएं हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। उनका स्नेह किसी नदी की तरह होता है जो बिना किसी भेदभाव के निरंतर बहता रहता है। उनकी बातें, हिदायतें और स्नेह समय के साथ और भी अनमोल लगने लगते हैं। संसार में यदि निस्वार्थ प्रेम का कोई सबसे सुंदर रूप है तो वो माता पिता का प्रेम है। और आगे लिखते हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी नहीं बटता। वाकई एक संदेश है, आज का सुरीला सफर शुरू करने से पहले दो घटनाओं का जिक्र करना है। महान ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपुर का देहांत, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, होम शांति। महानायक शोमैन राज कपूर का आज स्मृति दिन है। उस आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना कलाकार को अभिवादन। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सुरीला सफर पूरा करना है। इनके लिए हमारा प्यार कम नहीं होगा, बटेगा नहीं। और फिर आगे इन्होंने गाने लिखे हैं, लेकिन हम बता दें कि आज जो जन्म तिथि है, आज है अभिनेत्री नरगिस की, और हम उन्हें याद भी करेंगे। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में आपने यादों की महफिल कार्यक्रम में कई गाने सुने, और सदाबहार नगमे भी आप सुनेंगे। आज का आज के फनकार भी आपने सुना था सुबह 9:30 पर, जो आधारित था सुमन कल्याणपुर पर। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि जो नायक है उनके हाथ में क्या है, ये आपको बताना है। और एक सवाल और है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने माता पिता के प्यार की बात की है। भाई, कभी डांट भी तो पड़ी होगी या कभी अच्छी तरह से धुलाई भी हुई होगी, अगर याद हो, जिसे जिसके बाद आपने अपनी वो बात छोड़ दी जिसके लिए धुलाई या पिटाई हुई थी, तो वो भी हमें बताएं।

कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गाना उदित नारायण की आवाज में, और हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तुरंत बताया कि फिल्म में आमिर खान इलेक्ट्रिक गिटार लिए हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब, और इस सही जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भी हैं। एक श्रोता ने बताया है कि मेरी धुलाई 8वीं तक बहुत हुई है, खासकर तब जब गणित के सवाल नहीं बनते थे। पर जब 9वीं कक्षा में आई तो पापा ने एक दिन मेरे दोनों भाइयों और माँ को खास तौर पर बोला था, अब इस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता ना जब ऐसे कहा जाता है, लगता सच में हम बड़े हो गए है ना। एक श्रोता कह रहे हैं, माता पिता ही तो हर एक जीवन के मूल में हुआ करते हैं, और वे अपने वैश्विक परिवार को वट वृक्ष की तरह न केवल पालते पोसते हैं, उनके पालन पोषण से अभिषिक्त हृदय ही तो भली भांति ही नहीं अपितु सुरहृद के साथ गाया करते हैं कि धरती मेरी, माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। वह अपने गीत की पंक्ति जो है बड़ी सुंदरता से पिरो दी। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि भाई चाचा चाची भाई भाभी भी तो होते हैं अभिभावक। बिल्कुल सही, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाली थी कि बहुत बार बड़े भाई या बड़ी बहन बिल्कुल अभिभावक बनकर पालते पोसते हैं, और बहुत सारी बातें उनसे साझा करते हैं, और माता पिता से ज्यादा करीब उनके हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो तो उनके बारे में भी बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि जो हमने पहले पूछा था ना कि किस बात के लिए धुलाई हुई थी, एक श्रोता ने बताया, अगर आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मम्मी पापा की तो पिटाई भी बहुत प्यारी होती है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना इस बात से? संदेश मिला एक श्रोता का, कह रहे हैं कि जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए विविध भारती पर, तुम तो सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब सुरीला सफर का नजारा देखने मिला, तब से पंछी बनू उड़ता फिरूं विविध भारती के मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं प्रसारण तरंगों पर, दिल की गिरह खोलकर चुप ना बैठूंगा मैं, क्योंकि यहां कोई नहीं है अजनबी, मुड़ मुड़ के ना देखो मुझे, तुम मेरे पास आओ, VBS के साथ साथ गुजर जाए, हर दिन दिन हर पल गिन गिन साथिया साथ निभाना, साथ ही मेरे विविध भारती के राह में छोड़ ना जाना। बहुत सुंदर।

आज की इबारत यही इंगित कर रही है कि जिंदगी का सब कुछ सीखने व सिखाने वाले हमारे अभिभावक हमारे माता पिता होते हैं। बेहद खूबसूरत इबारत है। आज विश्व अभिभावक दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन के सभी प्रियजनों को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता एक बेहतर कल के निर्माता है। इस दुनिया का भविष्य उनके द्वारा प्रतिदिन हर पल निभाए जाने वाले कर्तव्यों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। हम सभी पर अपने माता पिता की शुभकामनाएं आशीर्वाद सदैव बना रहे। पर अब एक गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम क्या है और ये कौन सी अभिनेत्री गा रही हैं।

0: साथियों ने बता दिया, जाहिदा हुसैन अभिनेत्री नरगिस की भांजी थी। अनोखी रात फिल्म का ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। शैतानियों की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप। बधाई।

0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: तो भाई माँ बाप की, माता पिता की जो डांट होती है वो भी बड़ी मीठी होती है, और उस मीठी डांट को याद करते करते और ये संदेश लिखते हुए जरूर हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, वो मुस्कुरा रहे होंगे। लिखते हैं, हम 6 भाई 3 बहनों का लंबा परिवार है, मैं 7वीं नंबर पर हूँ, अतः बचपन में डांट मार आम बात थी, चाहे बड़े भाई से हो या माँ से। हाँ, पिताजी ने कभी नहीं मारा, क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बात बचपन की है, पिताजी ने गणित में भाग के कुछ सवाल स्लेट पट्टी पर लिखकर हल करने को दिए, उस समय गणित कमजोर था, 2 झपटे ऐसे पड़े कि सारे सवाल मैंने हल कर दिए, तब से लेकर आज तक कभी भी गणित में फेल नहीं हुए, वाह क्या बात है। एक और श्रोता बता रही है कि बचपन में माँ की साड़ी पहन के खूब खेल कूद कर गंदी करके रख दी, और जब माँ ने 3-4 तमाचे लगाए तो साड़ी पहनने का सारा भूत उतर गया। ओहो। एक और श्रोता ने बताया है, माँ तो खैर बहुत जल्दी चली गई थी, हम भाई बहनों को तो हमारे पापा ने ही बड़ा किया है और उन्होंने कभी भी हमें नहीं डांटा, आज भी वो हम भाई बहनों के साथ ही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, उनकी जरा भी तबीयत खराब होती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, सच ऐसा ही होता है। एक और श्रोता ने बताया है कि शैतानियां तो बहुत होती थी, पर इन शैतानियों का सरताज भैया रहता था, बेचारा भैया को ही पड़ जाता था, माँ कभी किसी को नहीं मारती थी, माँ इमोशनल ब्लैकमेल करती थी, उसके उस इमोशनल ब्लैकमेल के डर के मारे हम अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते थे, बोलती थी कि अगर तुमने झूठ बोला तो मेरे मुँह से खून निकल आएगा, पता नहीं कैसे माँ समझ जाती थी कि हम झूठ बोल रहे हैं, और वो मुंह में कुछ लाल रंग का चीज डालकर दिखा देती थी कि मेरे मुंह से लाल खून जैसा कुछ है, और हम भाई बहन डर के मारे उसे पकड़ के रोने लगते थे और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते थे। पिताजी गुस्सैल थे पर हम लड़कियों को कभी नहीं मारते थे। इसी जून में 2 साल पहले माँ भी चली गई, इन सब बातों को याद करके मन थोड़ा भावुक भी हो रहा है, बिल्कुल हो जाता है। एक और साथी बता रहे हैं कि हम लोग अपने पिताजी से बहुत डरते थे, उनका रौब घर में था, हमारी बुआ चाचा भी उनसे डरते थे, डांटने पर कभी भी उलट कर जवाब नहीं देते थे, माँ से हर तरह से बात कर लेते थे, हम लोगों की बहुत सी गलतियों के कारण हमारी माँ भी डांट खा जाती थी, अब माता पिता कोई नहीं है, अब कोई डांटने वाला नहीं है, सच ये बात बहुत कसकती है। एक श्रोता ने कहा है कि इबारत भावनापूर्ण पारिवारिक रिश्तों को चित्रित करती है और हमें बचपन के गलियारों की सैर कराती है। सही है, माता पिता और पारिवारिक संरक्षण ही शैशवकाल से उत्तरार्ध तक बौद्धिक शारीरिक नैतिक विकास में सहायक होता है, पुराने काल के संयुक्त परिवार बहुमुखी विकास का मुख्य कारक होता था, जहां चाचा चाची ताऊ ताई बुआ सभी के सानिध्य में बचपन गुजरता था। अब एकाकी परिवार का चलन और 1 या 2 बच्चों में सीमित परिवार रह गया है, भविष्य में मौसा मौसी बुआ शब्द शब्दकोश से लुप्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं, बहुत भावुक विषय पर इबारत है। हाँ है, तो बहुत दिल को छूने वाली बात। तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं, बताइए कि आवाज किनकी है और संगीतकार कौन है।

जवाब आया हमारे श्रोताओं ने बताया। अंधा कानून फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। और संदेश जब आए हैं तो पिटाई की बातें भी आई हैं। हमारे एक श्रोता ने कह रही हैं कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को मारते नहीं, प्यार से समझाते हैं। भाई हम लोग तो बिना मार खाए समझते ही नहीं थे। नई पीढ़ी को ये बात संभवतः अजीब ही लगे, पर इतनी मार डांट के बाद भी प्यार भी तो सबसे अधिक करते हैं। माँ पिता जैसा और कोई नहीं होता। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता कह रही है कि शादी के बाद माता पिता के साथ सास ससुर भी हमारे अभिभावक होते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम बोला जाता है। तो आप बताइए ना कुछ, अगर आपके पास कोई अनुभव हो या उनसे जुड़ी कोई बात हो, उनके प्यार का कोई खास पल आपने अगर जिया हो तो उसे हमारे साथ भी साझा करिए। एक संदेश में कहा है कि पांचवी कक्षा में एक बार स्कूल से छुट्टी होते ही सहेली के घर चले गए थे। उस समय इस बात का अनुमान नहीं था कि घर पे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिंता बढ़ने पर पापा जी स्कूल पहुंचे तो पता चला सब बच्चे चले गए हैं। 2 घंटे बाद जब घर पहुंचे तो माँ का गुस्सा पिटाई के रूप में मिला। थोड़ी देर बाद पापा जी भी घर आए। उन्होंने प्यार से समझाया कि पहले घर आओ फिर बता कर जाओ। ऐसा खट्टा मीठा अनुभव रहा जो अब तक याद है। सच में वो जो धक धक धक धक होती है जब पिटाई होने वाली होती है, वो बड़ी खतरनाक होती है। और पिटने के बाद जब प्यार मिलता है और जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो बड़ी ही प्यारी होती है। एक श्रोता कह रही है कि हमारी पिटाई तो नहीं हुई क्योंकि हम तो दूसरों को मारते या डांटते देखकर ही रो देते थे। जब कभी पापा हमारे छोटे भाई को उसकी गलती के लिए मारते थे, हम रो देते थे। तब बहुत छोटे थे तो पापा कहते थे अब तुम्हारी वजह से इसे डांट भी नहीं सकते। और कभी कभी जब हम शिकायत करते कि इसने रेडियो फेंक दिया, वो खराब हो गया, तो पापा कहते तुम बताओ हम क्या करें। एक श्रोता ने लिखा है कि मायके में माता

पिता का साथ एक बेटी के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक संबल और सुरक्षा कवच होता है। ये वो सुरक्षित कोना है जहाँ बिना किसी शर्त के प्रेम, निस्वार्थ सहयोग और बचपन जैसी बेफिक्री मिलती है। मायके में माता पिता के सानिध्य के मुख्य पहलू, विवाह के बाद जीवन के हर उतार चढ़ाव में माता पिता की मौजूदगी एक ढाल की तरह काम करती है। सही बात है, उनके पास बिताया गया समय मानसिक शांति और ऊर्जा देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने कहा है कि इंसान को पक्षियों की तरह उन्मुक्त होकर जीने, वर्तमान में रहने और प्रकृति के करीब रहने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पक्षी कल की चिंता में नहीं जीते, वे आज के हर पल का आनंद लेते हैं, इसलिए इंसान भी भविष्य के तनाव को कम करने के लिए वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। पक्षियों ने कभी अपने बच्चों को घोंसला बनाकर नहीं दिया, वो तो सिर्फ अपने बच्चों को उड़ने की कला सिखाते हैं। तनाव मुक्त रहने और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने का नजरिया पक्षियों की तरह ही होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। गाने को सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अभिनेता कौन है।

का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें, शैलेंद्र के वोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब के लिए बेहद बेहद ढेर सारा शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बता दिया, तमाम श्रोताओं ने बताया कि प्रदीप कुमार और फिरोज खान इस फिल्म में अभिनेता के रूप में नजर आए थे। और अब संदेशों की बात हम करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें मम्मी पापा घर में छुपा कर रख देते हैं, बाद में देते हैं, हमारे ही लिए रखते हैं, लेकिन वो छुपा हुआ खजाना ढूंढना उस समय बहुत एडवेंचरस लगता है, बड़ा रोमांचकारी लगता है, और कई बार वो ढूंढ भी लिया जाता है, और ढूंढने के बाद जब पता लगता है तो क्या होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें जरूर बताएं। एक श्रोता लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि मार के डर से ही डरें, हमारे मम्मी पापा आंखों से डरा देते थे। जी हाँ, ये आंखों का अनुशासन भी गजब का होता था। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बाबूजी हम लोगों को जूते डंडा से पीट देते यदि उनके सामने आवाज वाला खेलते थे, पर माँ गलतियों पर झाड़ू से मारती थी, पढ़ने को हमेशा बोलती थी, इसलिए आज हम भी अच्छे जॉब में हैं। बाबूजी किताब के लिए हमेशा आगे रहते थे, कलाकार हैं, बाबूजी दोनों हाथों से लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक और संदेश में बताया है कि बचपन में माँ बड़े भाई मास्टर जी से मार खाने और उससे बचने के लिए दूर दौड़ कर भागने का आनंद ही अलग था। और एक संदेश है कि हमारी पीढ़ी वो थी, माता पिता की मार खाकर रोते थे, इतना रोते थे कि चुप कराने के लिए भी मार खाने के बाद चुप होते थे। क्या बात है। इन बातों के साथ चेहरे पर आप सभी के मुस्कान भी आती जा रही है। और एक संदेश में कहा है कि माता पिता बच्चे को प्यार, संस्कार और सुरक्षा देकर पालते हैं, जबकि सास ससुर का रिश्ता हमें परिस्थितियों का सामना करना, समझौता करना और एक नई सामाजिक दुनिया में अपनी पहचान बनाना सिखाता है। हर परिवार और परिस्थिति अलग होती है, कई बार सास ससुर का अनुभव और सीख जीवन में मजबूती लाते हैं, तो कभी उनके साथ का संघर्ष व्यक्ति को आत्मनिर्भर और साहसी बना देता है। एक श्रोता ने बताया है कि हम जब मुंबई में रहते थे, फोर्थ क्लास में था, तो एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, मेन रोड क्रॉस कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और कार टैक्सी ने मुझे टक्कर मार दी, मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो टैक्सी ड्राइवर अंकल जी बहुत डरे हुए थे, वैसे गलती मेरी थी, दूसरे लोगों ने मुझसे पूछा कि घर कहाँ है, हम छोड़ दें, मैं कहने लगा अंकल मुझे छोड़ने मत चलो प्लीज, मम्मी बहुत डांटेगी और पिटाई होगी, मैं चला जाऊंगा। फिर भी ड्राइवर अंकल छोड़ने चले, परंतु पूज्य माता जी को घटना का पता चला तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और खुद ही रोने लगी, कहीं मुझे ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं। ये होता है मां का प्यार, और मैं डर रहा था। तो अब वो खजाने वाली बात अगर याद आ रही हो तो जरूर बताएं, और बताएं कि इस फिल्म के गीतकार संगीतकार कौन हैं।

फिल्म श्री 420 के इस गाने के लिए सही जवाब आ गया। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। आशा भोसले और मन्ना डे के साथ साथियों की आवाजों में आपने ये गाना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। रात और दिन फिल्म का जो गाना आपने इससे पहले सुना था, उसके बारे में हमारे एक श्रोता ने बताया कि वोल्स धुन पर विशेष आधारित नरगिस जी और फिरोज खान, रात और दिन शंकर जयकिशन जी का संगीत, अकॉर्डियन खूबसूरत और तबले का खास चलन। और बहुत सारे श्रोता बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि आज तो मेरे में भेजे हुए बहुत सारे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, है ना, खुशी की बात। एक श्रोता ने बताया कि मेरे बेटे का विवाह 9 साल पहले हुआ है, कभी सास और बहू में कंकस नहीं होता, माँ बेटी की तरह सहृदय भाव से रहते हैं, ये भी जीवन का आनंद है। छोटी बातों पर कभी छोटा मन नहीं करना चाहिए, झगड़े का कारण एक दूसरे के प्रति कटु वचन से अभाव बढ़ता है। एक संदेश में कहा गया है कि बच्चों के जीवन के पहले गुरु माता पिता होते हैं, जो अच्छे बुरे की परख से अवगत कराते हैं। बच्चों पर अपने माता पिता के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है, लेकिन सामाजिक तौर तरीके सीखने की शुरुआत अपने परिवार से ही होती है, जहां माँ के आंचल की छांव और पिता के प्यार से बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाता है।

आज की एक और संदेश में कहा है कि आज की इबारत की खास बात यह है कि गीतों को लेकर इसमें कुछ भी दबा छुपा सस्पेंस नहीं है। इबारत पढ़कर साफ साफ पता लग रहा है कौन कौन से सदाबहार सुपरहिट गीत बजने वाले हैं। कुल मिलाकर बहुत सरल और आसान समझ में आने वाली इबारत है। वैसे कुछ सस्पेंस हो तो और

मजा है। तो चलिए आप सबको माता पिता दिवस की बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। तो अब अगला गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थी।

फिल्म बहारों के सपने का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में आपने सुना। राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सही जवाब आ गया। आशा पारेख और राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। संदेश मिला है कि हमारी श्रोता ने बताया है कि माँ से तो नहीं डर लगता था, पिता से बहुत डरते थे। कड़क स्वभाव वाले और शिष्ट पालन के आग्रही थे। सत्य की राह पर खुद चलते थे, हमें भी सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। आज माता पिता दोनों नहीं हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से हम सुखी हैं। और बचपन की यादें ताजा हुई, मुड़ मुड़ के न देख गाना सुनकर, हमारी एक श्रोता की क्या बात है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका पूरे घर में रुतबा चलता था। हम बच्चों को भी बहुत डर लगता था, लेकिन थे वो बहुत विकासवादी। आज से 70 साल पहले उन्होंने हमारी बुआ जी को स्कूल भेजा था। वो गांव से इकलौती थी स्कूल जाने वाली। क्या बात है, नतमस्तक हो जाते हैं हम ऐसे बुजुर्गों के सामने जो हमें विकासवादी सोच की तरफ के अपना दिखाते हैं कि विकासवादी सोच से क्या क्या बदलाव आ सकता है। और अब अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। गाने को सुनिए और प्रमुख कलाकारों के नाम आपको

खजाना ढूंढने की बात को लेकर हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक बार हमारे नाना जी जब घर आए तो हम बच्चों के लिए टॉफी का पैक लेकर आए, माँ ने उसको छुपा कर रख दिया। हम सबका ध्यान उस पर लगा था, बहुत जतन किए गए पर सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन माँ हर बच्चे को उनके अच्छे काम के लिए जब उपहार स्वरूप टॉफी देती तो मन प्रसन्न हो जाता था।

सराहना चाहिए। क्या बात है। दूध दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक साथी कह रहे हैं कि रोज सुबह आधा लीटर दूध केसर डालकर पीजिए। हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहां हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर संदेशों के लिए। हाँ, समय की कमी के चलते हम बहुत से संदेश नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर संदेश हैं और इन्हीं संदेशों के बीच में हमने ढूंढ लिया है प्यार और माता-पिता का वो समर्पण और त्याग। तो अब इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। डीजे राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 10 सीटों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इन सीटों में से 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई 1 सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तक निर्धारित है। प्रत्याशी 11 जून तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतों की गिनती होगी। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम कौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 विधान पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 3 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना तथा

0: पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। इधर पटना में कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसानों को रासायनिक खाद की जगह हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। श्री सिन्हा ने बताया कि अभियान के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी जोड़ा जाएगा। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कयाची के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर कॉमन रैंक लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। शुभम कयाची के नादरागंज ब्रह्मणी घाट के निवासी हैं। उन्होंने जेईई मेंस के दोनों सत्रों में 100% प्राप्त किए थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभम कुमार को इस सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। केंद्रीय मंत्री और गया के सांसद जीतन राम मांझी ने शुभम कुमार को बिहार का गौरव बताते हुए इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में सरकारी बसों से सफर आज से महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। वहीं सिटी बसों के किराए में भी 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 53.50 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब पटना में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रूपये में मिलेगा। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के हुसैनगंज में सबसे अधिक 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भाग के कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड में अपराधियों ने कुख्यात गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि गोविंद शर्मा के फ्लैट में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुजफ्फरपुर के तत्कालीन मेयर समीर कुमार और जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। बेगूसराय जिले के पछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 83 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार कानून साज काउंसिल की खाली हुई 10 नशस्तों के इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामजदगी का अमल भी शुरू हो गया है। इन सीटों में 9 सीट के लिए 2 साल इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि साबिक वजीर आला नीतीश कुमार के इस्तीफा से खाली हुई 1 सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। इंतखाबी कमीशन से मौसूला इत्तला के मुताबिक नामजदगी की आखिरी तारीख 8 जून तक मुकर्रर है। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों पर 18 जून को पोलिंग होगी और इसी दिन शाम को वोटों की गिनती होगी। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों की मुद्दत कार 28

0: जी उनको पूरी हो रही है। ज़राअत व किसान फलाह के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन से मुल्कगीर खेत बचाओ मुहिम का आगाज़ किया। ये मुहिम 3 जून तक चलेगी। मुहिम का खास मकसद केमिकल्स का मुतवाजन और मुनासिब इस्तेमाल बढ़ाना, मौसम के चैलेंजेस से किसानों को बर वक्त सलाह देना और पंचायत सतह पर अवामी हिस्सेदारी को यकीनी बनाना है। इधर पटना में ज़रई भवन में मुनक़िद प्रोग्राम में वज़ीर ज़राअत विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुहिम के दौरान काश्तकारों को कीमियाई खाद की जगह ग्रीन खाद के इस्तेमाल के लिए तरगीब दी जाएगी। जनाब सिन्हा ने बताया कि मुहिम के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और वज़ीर आज़म किसान सम्मान निधि मंसूबे से भी मरबूत किया जाएगा। IIT रुड़की ने JEE एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस इम्तहान में गया जी के शुभम कुमार ने 360 में से 330 मार्क्स हासिल करके कॉमन रैंक लिस्ट में अव्वल मकाम हासिल किया है। शुभम गया जी के नादरागंज ब्रह्मणी घाट के बाशिंदा हैं। उन्होंने JEE मेंस के दोनों सेशन में 100% हासिल किए थे। वजीर आला सम्राट चौधरी ने शुभम कुमार को इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना की है। गया के MP और मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने श्री कुमार को बिहार का फख्र बताते हुए इस कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी है। रियासत में सरकारी बसों से सफ़र आज से महंगा हो गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने बस किराए में 10 से 15% तक का इजाफा किया है। वहीं सिटी बसों के किराए में भी 15% तक का इजाफा किया गया है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 53.50 रुपये का इजाफा किया है। अब पटना में कमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रुपये में मिलेगा। वहीं घरेलू सिलेंडरों की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नई कीमतें आज से नाफिज हो गई हैं। रियासत में बारिश की सरगर्मियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के हुसैनगंज में सबसे ज़्यादा 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का इम्कान जताया है। इस दौरान जनूब मगरबी, जनूब वस्त और जनूब मशरक़ी हिस्से के कुछ ज़िलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का अंदेशा है। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड में जराइम पेशा अफराद ने बदनाम जमाना गोविंद शर्मा को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि गोविंद शर्मा के फ्लैट में पहले से मौके की ताक में रहे जराइम पेशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जाए वकूं पर ही इसकी मौत हो गई। महलूक मुजफ्फरपुर के उस वक्त के मेयर समीर कुमार और ज़मीन ताजिर आशुतोष शाही कत्ल मामले का अहम मुलजिम था। बेगूसराय ज़िला के बछवाड़ा थाना हलका में पुलिस ने छापामारी करके तकरीबन 83 लीटर गैर मुल्की शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लिए सुनिए रोजगार सूचना। संघ लोक सेवा आयोग UPSC NDA परीक्षा के आलोक में कुल 394 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.upsc.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोग को पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में

वो पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

0: कर्मचारी चयन आयोग SSC CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।
1: दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन के बीच दिल्ली में

0: तथा के बीच साझेदारी की आशा है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री भवन में समारोह मंत्रियों को पद और गोप

0: भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।

0: एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
1: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
0: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
3: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में

अपनी सुरीली आवाज की खुशबू से तमाम यादगार गीतों को महकाने वाली सुमन कल्याणपुर की यह आवाज, साथ में मोहम्मद रफी, बेटी बेटे फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, भरत व्यास की रचना है और सतीश भाटिया का संगीत।

चांद और सूरज फिल्म का गाना आपने सुना। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी के स्वरों में शैलेंद्र की रचना थी और सल चौधरी का संगीत। इन सुंदर गीतों के साथ मन का जला दीप सदैव प्रकाश बिखेरता रहता है। फिल्म संगीत के स्वर्ण युग का आखिरी सुमन भी कल मुरझा गया, लेकिन उनकी आवाज की कशिश हमेशा दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। आइए सुनते हैं दिल ही तो है फिल्म का गाना। सुमन कल्याणपुर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रोशन की तर्ज़।

0: में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जब से तुम्हें देखा है फिल्म का गाना, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से सवारा है दत्ताराम ने।

सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मासूम फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं, रॉबिन बनर्जी का संगीत है, आवाज है सुमन कल्याणपुर की।

हसरत जयपुरी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। फिल्म का नाम था जी चाहता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहब्बत इसको कहते हैं। यह है फिल्म का नाम, आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है खयाम ने।

0: आँखों की बुझा लूं तो चले जाएगा ठहरिए होश में।
1: इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों में

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: कहिए कैसी हैं मंजरी जी आप?
2: बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छी सी हूँ।
1: हाँ, जी वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं, बहुत ज्यादा और फ्रेश लग रही हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: और मुझे लगता है कि जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ आप तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं, कभी नहीं कर रही हैं, तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा महसूस करता है।
2: गीत संगीत की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हों आप गीत सुन लीजिए आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी उदासी आपके पास से कब कहां किधर चली गई अगर आप बिल्कुल दिल से सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मंजरी। हाँ लेकिन एक उदासी का सबब आज तो हमारे मन में है।
2: बिल्कुल
1: है ना।
2: बिल्कुल वही हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब अच्छी अच्छी गायक गायिका चले जाते हैं तो उनके ना चाहिए उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल
2: तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर आती, दिल भर आता है।
1: बिल्कुल। कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें जब हमारी जिंदगी से, विचारों से, हमारे दिल से, हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से चला जाता है तो हम क्या महसूस करते। और हमारे श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई थी।
2: नहीं वो बात ही ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती जब हम उन चीजों को याद करते हैं और जो हमारे बीच से अब चले गए हैं और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए। वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते हैं।
1: और इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके गानों को जिया हमने। मुझे याद है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के, आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है उनके गाए गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है।
2: बिल्कुल
1: ऐसा महसूस होता है,
2: है
1: ना। इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया, आप तक पहुंचाया और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के साथ गाया
2: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था। बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं वो थी और जो आज हमारे बीच नहीं है तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और हमारी सखी ने भी एक
1: कुछ लिखा है, बताइए हमारी सखी ने क्या लिखा है।
2: इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है। आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे, हालांकि शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज दी।
1: आवाज दी बिल्कुल। और उनकी आवाज हमने जन जन तक पहुंचाई रेडियो के माध्यम से, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सखी सहेली के इस मंच से, इस परिवार से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।

0: हाँ तो मंजरी, आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, हमारी सखियां और सखा जानना भी चाहते होंगे।
1: बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मुंगौड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्ठी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
0: चलिए तो पहले ही कहानी सुन लेते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।

आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है।

0: है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू

0: दार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्र मुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौटकर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
1: तो माता पिता से कहा होता, सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
2: तो गाली क्यों देते हो?
1: गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
2: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
1: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
2: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
1: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
2: सभी को होता है, मुझे भी है।
1: अपने को अभागिनी समझती हो?
2: हूं ही, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता।
1: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
2: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
1: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था। उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक

0: एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा। अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था। पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पीकर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी। वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
1: यहां की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
2: अच्छा,
1: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेते थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहां चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
3: गहने बनवाता था कि नहीं?
1: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
3: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
0: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
2: चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है?
3: हाँ है, तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
2: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
3: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
2: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
3: अच्छा,
2: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है, फटकार बता दी।
1: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों दत्त तेरे लालची।
2: 200 रुपए नहीं, 2,000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
0: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
3: अब क्या करूं, जब सुरेश जैसे सज्जन की नींद

0: बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहे का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे। इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं। वहां तो गहनों से प्रेम है।
1: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
2: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
3: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनय

0: अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: हाँ तो मंजू जी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
4: बिल्कुल मिलने वाले हैं। हाँ,
3: और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
4: और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
3: शुभकामनाएं
4: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सब मिलके एक समय पे इकट्ठे होंगे।
3: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं और खासतौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर
4: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर
3: कल
4: आएंगे बर्थडे मनाने।
3: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है जी। और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के आसपास होते हैं ना तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आंख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए
1: और उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए पसंद का खाना बना सकते हैं वो बनाएं, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमारी पहली पाठशाला होते हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती, केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं, और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और एक बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा है ना,
1: और उसका कारण भी है
0: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये हमारी जिंदगी बन गए हैं, है ना, तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कि अगर हमने इतिश्री कर दी,
1: नहीं, नहीं
0: ये वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें संदेश देता है, और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
1: बिल्कुल, और मंदाकिनी जी हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है, उन्हें सुरक्षा स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं, उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो घर बच्चे की देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी है, चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे, तो बच्चे कैसे पल जाते थे
0: पता ही नहीं
1: चलता था और बच्चों के अंदर सबके गुण आते

0: या कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो, तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए नियम अनुशासन सिखाने की, तो उससे बच्चे सीखते थे और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तक को पता नहीं चलता था। लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है, आज हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जहां तक है एकल परिवार हो गए हैं, और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे, वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने। और होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती बच्चों को जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य पालते हैं।
0: और देखिए हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहां से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना, दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
1: बहुत सुंदर बात लिखी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सपने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई, अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ पवित्र और अनमोल एहसास है, ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत सुरक्षा और सही संस्कार देती है, इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता, जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं, उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो, ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं, उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं, उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं। और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन लें
0: जी।

0: हाँ,
1: तो देखिए अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो तबियत खराब हुई तो सीधे वो दूध को ही बोल देते, नहीं दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
0: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
1: कुछ समय तक तबियत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
0: हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है, दूध हमारे लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए।
1: होना चाहिए।
0: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज

0: विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है। आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता, और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
1: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
0: अरे हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है मुझे।
1: और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है, बेहतर रखता है कहना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, हाँ। आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को पिला सकते हैं।
0: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मुंगौड़ी एक कप,
0: आलू चाहिए आधा कप
1: आलू, 2 लंबे पतले कटे हुए मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें, उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं, अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूनें जब तक तेल अलग ना होने लगे, भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मुंगौड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिलाएं और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें, कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए, अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें, आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ अगर हमारे श्रोता पसंद करती हैं। सखियां, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, छोटी चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें, एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें, सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें, आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें, फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है, एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6 और इसको गर्म गर्म तेल में तलें और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
1: गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी, सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ, मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुखे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: जाओ जाओ जाओ किसी वैद को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
3: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा। बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
3: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
3: हाँ जी,
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
3: सही है,
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
3: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी

0: हो जाती है। ठीक है, दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है, वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
1: अच्छा,
0: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही, ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू। वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
1: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
0: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे। उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना, वो पेरेंट्स का काम है।
1: जी
0: ठीक है। इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
1: पेट में।
0: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज मैं बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
1: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं, तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
0: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए।
1: जी,
0: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले, मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज पीस, कॉटन की तरह, जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गौज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गौज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गौज पीस को पानी में डुबा के गीले गौज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से।
1: छोटे बच्चों की,
0: छोटे बच्चों के लिए एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए, जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0-3 ईयर्स, मतलब बचपन, पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे, खा ले, तो भी

0: कोई उनको तकलीफ ना हो।
1: बिल्कुल,
0: उसकी जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है। वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे।
1: ये हम सभी के मामले में करें।
0: हाँ,
1: चाहे बच्चे हो
0: या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े
0: घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले तब तक हम लोग चेंज नहीं करते, बट ऐसा नहीं होता है। माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूं वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
1: चॉकलेट,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूं। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी, सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा। लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके,
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
1: तो हमको कहीं बाहर
0: क्रेविंग नहीं होता है। बाहर इजीली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है, नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है इनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते
0: लेकिन
1: हैं।
0: नस तक
1: अभी तक पहुंचा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
0: जिसकी हमने चर्चा की।
1: एग्जैक्टली,
0: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
1: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं, अभी वो नस सड़ गई है।
0: हाँ।
1: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
0: ये बहुत खतरनाक है।
1: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
0: अच्छा।
1: पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता है।
0: हाँ।
1: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि

0: दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे डेढ़ गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
1: सेम बात है,
0: सेम बात यहाँ पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है। लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं, हाँ उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली। नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो
1: जी।
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। तो वो सिक्रीशन कम होता है तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए, हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को, अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही। आज के बच्चों में तो वो उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
1: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है, मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स, ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: ये रूल होता था घर का। आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए,
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
1: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है।
0: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की

0: बच्ची को लेके आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो,
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे तो। मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही है, बहुत सही है।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत नुकसानदेह है।
0: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। तो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो।
1: क्या बात है,
0: क्योंकि दांतों में दर्द होता है तो नैनो से तो सावन बरस नहीं है।
1: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है, किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनाल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो

0: आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
1: यस yes.
0: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
1: यस yes.
0: इसके लिए रूट कैनाल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
1: जी
0: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं, सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं।
1: अरे
0: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
1: अरे बाप रे,
0: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
1: ओहो,
0: और ये होता है सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
1: बिल्कुल,
0: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
1: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
0: एग्जैक्टली,
1: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
0: एग्जैक्टली, मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
1: वो मैं जानना चाहता हूँ,
0: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 to 130 पास्कल, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब एक सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज।
1: ये बहुत ज्यादा है,
0: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
1: यस।
0: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है। पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए, और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइन्फेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना। जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है, जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़े होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस में, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का ऐसा कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
1: बिल्कुल,
0: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा पा रहा हूं,
1: भी चल सकता है,
0: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है।

0: सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी डेढ़ गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, एक डेढ़ दो महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था डेढ़ दो महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
1: अच्छा,
0: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रिस्टोर इट्स फंक्शन।
1: ओके,
0: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो वो
0: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
1: ओके,
0: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके,
0: डेंटिस्ट
1: के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है। और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है एक मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है,
0: इतनी सी बात होती है। पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है। और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
1: जी,
0: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहाँ पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
1: जी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ न कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है। परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है।
0: ओके,
1: उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
0: फ्लॉस के लिए वो
1: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है। अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है।
0: ओके,
1: जिसको अलाइनर्स बोला जाता है, तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है। और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा
0: जी,
1: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के, फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है, तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना, वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है, वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनर्स से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनर्स से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनर्स पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है।
0: ओके,
1: सेम ही आता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अंटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है, उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है।
0: ओके,
1: तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।

0: डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है। पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है।
1: हाँ जी,
0: इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है। एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
1: चलेगा। तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में। पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की।
0: अच्छा, वो दांतों की बीमारी?
1: दांतों की बीमारी नहीं है। ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है, तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए।
0: ओके।
1: अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे डेढ़ गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब उसका सपोर्ट जाएगा।
0: यस।
1: तब दांत हिलेगा।
0: तो हड्डी मामला है।
1: एग्जैक्टली। वो एक दिन में होता नहीं है। पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी चार स्टेजेस है। ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है। उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं। स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मल लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं।
0: ओके।
1: तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस।
0: ओके।
1: दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट।
0: ओके।
1: वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहां से जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज यहां पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड वन वाली स्टेजेस पे हो तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
0: हाँ ये थोड़ा विजिबल साइन है।
1: एग्जैक्टली, ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
0: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
1: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो। अगर आप उस बारे में अवेयर हो,
0: लोग आपसे दूर जाने लगते हैं।
1: हाँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड टिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो।
0: जी,
1: ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से।
0: हाँ जी,
1: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के चार दांत गिर गए। बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
0: कितना नॉर्मल है ना,
1: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है।
0: बिल्कुल।
1: जो हमें फ्री मिले हैं इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
0: यस।
1: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो तो करोड़ों में जाती है, कई सौ करोड़ों में जाती है।
0: यस।
1: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं, फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
0: वो सारी
1: चीजें,
0: तंबाकू,
1: स्मोकिंग और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
0: दांतों की
1: ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह।
0: अरे अरे।
1: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ, और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है।
0: बिल्कुल।
1: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो।
0: बिल्कुल।
1: ये सजेशन मैं यहां दूंगा।
0: इसी बात पर एक गाना सुनते और उसके बाद

0: डिंचर वाली बात करते हैं।
1: सही है, तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दाद बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे।
0: वाह, पर हम वफा करना सीखे क्योंकि आप
1: क्योंकि आपने
0: करना सीखे।
1: एग्जैक्टली
0: क्या बात है, सुनते
2: हम

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन दांत तीन
0: लेवल में लाए जाते
1: हैं। एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, ये आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है,
0: जी जी,
1: आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला है, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा,
0: yes,
1: वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर, क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिवअप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है, एक स्क्रू जैसी चीज होती है। एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में

0: नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
1: बहुत जल्दी होने लगा ये,
0: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
1: बाकायदा,
0: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,
1: और वो महंगी चीज है।
0: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो 1 या 2 सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे, ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से लेके 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का,
1: एक दांत का।
0: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है, सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120 टू 130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का।
1: बहुत कम है,
0: बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते हैं 110 से 115 तक,
1: इक्विवेलेंट है,
0: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो,
1: पर इम्प्लांट बहुत महंगा,
0: इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
1: जी,
0: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
1: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती है, और जैसे कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते।
0: एग्जैक्टली।
1: तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
0: स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, खुल के स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच सर।
2: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अनस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर श्री गोयल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को बाजारों में विविधता लाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्र में निर्बाध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए मजबूत समर्थन भी व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियों पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रहा है।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95%

0: डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज समझौते को तलाक का निर्णय मानकर पुनर्विवाह किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा घर आंगन, और संध्या 6:00 हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी लोकगीत। संध्या 6:05 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

संध्या 6:10 पर ग्रामीण कार्यक्रम होगा गांव घर। इसमें हमारे श्रोता सुनेंगे चर्चा, माता पिता का हमारे जीवन में महत्व विषय पर चर्चा, और कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न व्याधियां और निदान। भेंट वार्ताकार होंगे श्रीपति सिंह।

संध्या 6:40 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत, और शाम 7 बजे हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

गुड इवनिंग रोहतास, हमारे ये सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:15 से। शाम 7:30 प्रादेशिक समाचार और 7:42 पर आप सुनेंगे जिले के हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले।

शाम 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। रात्रि 9:15 समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत।

रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा बंदगी, इसमें आप सुनेंगे नात। रात्रि 9:30 पर विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार हमरीले करेंगे।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स और रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे अनुराधा पडवाल और साधु की आवाजों में आरती। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। आप लीजिए सुनिए अनुप जलोटा के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखियों, गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, बढ़ता हुआ टेम्परेचर और लू जैसी समस्याएं लेकर आता है। इस दौरान अगर हम अपनी सेहत का सही ध्यान न रखें तो डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी, चक्कर आना, थकान, सरदर्द और कई अन्य परेशानियां हो सकती है। इसलिए आज हम बात करेंगे कुछ आसान और जरूरी बातों की, जिन्हें अपनाकर हम सभी गर्मी और लू से बच सकते हैं। देखिए, हम सभी गर्मी और धूप से परेशान रहते हैं, लू से, और ये सारी चीजें हम सबके साथ होती है ना। जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है हमें चक्कर कभी लगता है, कभी सर में दर्द होती है, या बहुत ज्यादा पसीने से हमें लगता है कि हमें सांस लेने में कठिनाई हो रही है, बहुत ज्यादा पानी पीने का मन करता है। तो ये सब चीजें नॉर्मल है, मगर अगर इससे न बचे, इस पर ध्यान न दे तो कई सारी समस्याएं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात ये है कि पानी पीना। जी हाँ, गर्मी में हमारा शरीर पसीने के रूप में बहुत सारा पानी खो देता है, इसलिए दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। सिर्फ प्यास लगने का इंतजार नहीं करना है हमें, बल्कि नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और ORS जैसे ड्रिंक्स भी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। तो प्यास लगे या ना लगे, हमें पानी या इस तरह के पेय पदार्थ जरूर पीते रहना चाहिए। दूसरी बात, तेज धूप से बचना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ध्यान दे, या फिर अगर बहुत जरूरी ना हो तो दोपहर के 12 से 4 के बीच बाहर ना निकले, क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा तेज धूप होती है। तो कोशिश करें कि इस समय बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले। अगर बाहर जाना जरूरी है तो छाता, कैप, गमछा, बॉटल पानी यानी कि पानी भरा हुआ बॉटल जिसमें ORS हो या फिर नींबू पानी हो, ये सब को रखकर लेकर ही जाए। चश्मा भी जरूर लगाए ताकि आंख को भी राहत मिल सके। अब अगर बात करें कपड़ों की चुनाव की, तो भाई गर्मी में कपड़ों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। हल्के रंग के और कॉटन के कपड़े पहनने से काफी हद तक हमें थोड़ी सी मतलब निजात मिल जाती है। ये कपड़े को हवा को आसानी से पास होने देते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं। बहुत ज्यादा मोटे या सिंथेटिक कपड़े पहनने से गर्मी में हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हमें गर्मी भी महसूस होती है और स्किन एलर्जी या स्किन इन्फेक्शन या बहुत सारी परेशानियां भी हो सकती है। अब अगर बात करते हैं खाने पीने की, तो गर्मियों में हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और अन्य सीजनल फ्रूट्स का सेवन हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को पानी और जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बहुत ज्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड से हमें बचना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है। बच्चे और बुजुर्गों को गर्मी का जो होता है असर बहुत जल्दी होता है, इसलिए उनका खास ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को धूप में ज्यादा देर तक खेलने ना दे, और बुजुर्गों को भी समय समय पर पानी पीने की सलाह देते रहे, उन्हें भी बच्चों को भी पानी दे। और आइए अब लू लगने से कुछ लक्षण भी जान लेते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को तेज शरीर में दर्द है, सर दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी जैसा लग रहा है, शरीर बहुत गर्म हो जाता है या बेहोशी जैसी स्थिति हो जाती है, तो ये लू लगने के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत व्यक्ति को ठंडी जगह पर ले जाएं, पानी पिलाएं, गीले कपड़े से शरीर को ठंडक पहुंचाएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। तो सखियों, कहते हैं ना कि थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी के साथ हम गर्मी और लू के प्रभाव से बच सकते हैं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, पानी पीते रहिए और सेहतमंद रहिए। और इसके साथ अगर लू से बचना है तो आम पन्ना का सेवन नियमित करें। तो चलिए, ये थी बातें गर्मी और लू की। फिर से सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक गीत और।

और अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि या हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं कि दूध पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। दूध को एक कंप्लीट फूड माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12, पोटेशियम और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी तत्व हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। बच्चों के लिए दूध बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उनकी हड्डियों और दांतों के विकास में मदद करते हैं। बचपन में शरीर तेजी से बढ़ता है और दूध उस ग्रोथ को सपोर्ट करता है। युवावस्था में दूध मसल्स को मजबूत बनाए और शरीर को ऊर्जा देने में सहायक होता है। जो लोग पढ़ाई, नौकरी या शारीरिक मेहनत करते हैं उनके लिए दूध प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। महिलाओं के लिए भी दूध बहुत जरूरी है। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। विशेष रूप से गर्भावस्था और बढ़ती उम्र में दूध का सेवन फायदेमंद माना जाता है। तो इसलिए सखियो, अपनी सेहत को अच्छे से बनाए रखने के लिए या अपने परिवार के लिए हम सभी को भी दूध पीना बेहद जरूरी है। अगर बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए दूध और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती है। दूध में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन हड्डियों की सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं और कमजोरी को कम कर सकते हैं। हालांकि जिन लोगों को दूध से एलर्जी या लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है उन्हें डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार दूध या उसके विकल्प चुनने चाहिए। मगर फिर भी अगर जिनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है उनको तो कम से कम एक गिलास दूध पीना बेहद जरूरी है। तो अपना और अपने परिवार का, बच्चों के, बुजुर्गों का, हर किसी का ध्यान आप एक गिलास दूध देकर भी कर सकती हैं, है ना। तो चलिए, ये थी बात ही दूध हर उम्र में जरूरी की। और अब समय हो चुका है, घर आंगन कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। तो सखियो, अपनी दोस्त को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

ये था महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं भोजपुरी लोकगीत। गायक कलाकार हैं सुरेंद्र प्रसाद।

भोजपुरी लोकगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुरेंद्र प्रसाद के स्वर में ये शिव भजन। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 6:05 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

0: cover trade, defense, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides express interest in forging closer cooperation.
1: मिलल जानकारी के मुताबिक नामांकन करे के आखिरी तारीख 8 जून तय भइल बा। प्रत्याशी लोग 11 जून तक अपन नाम वापस ले सकेला लोग। ए सब सीट खातिर 18 जून के वोट डालल जाए और ओही दिने सांझ की गिनती भी होगी। केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेना में देश भर में खेत बचाओ अभियान के शुरू कैले। ये अभियान 3 जून ले चली। ए अभियान के मुख्य मकसद हवे कि खाद के सही और संतुलित इस्तेमाल बढ़ावल जाओ, साथ ही मौसम के चुनौती के बीच किसान के समय पर सलाह मिली और पंचायत स्तर पर लोग के भागीदारी बढ़ी। एने पटना के कृषि भवन में भइल कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल भइले। उ कहले कि अभियान के दौरान किसान के रासायनिक खाद के जगह हरी खाद के इस्तेमाल खातिर प्रेरित कइल जाए। श्री सिन्हा बतावले कि ए अभियान के तहत किसान के किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी जोड़ल जाए। जेई एडवांस 2026 में गया जी के शुभम कुमार पूरा देश में पहला स्थान हासिल कइले बाड़न। उ ए परीक्षा में 360

0: में से 330 नंबर लाके कॉमन रैंक लिस्ट में टॉप कैले बाड़न। गया जी के नादरागंज ब्रह्मनी घाट के रहे वाला शुभम जेई मेन्स के दोनों सत्र में 100% हासिल कैले बाड़न। वो अपने सफलता के श्रेय अपन गुरु लोग माई बाबूजी और अपन मेहनत के देहले बाड़न। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शुभम कुमार के बधाई दिले। बिहार लोक भवन राज्य के तरफ से 14 गो विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति लोगन के बहाली खातिर आवेदन मांगल गईल बा। फॉर्म भरे के आखिरी तारीख 1 जुलाई तय कैल गईल बा। तेल कंपनी के तरफ से 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 53.50 रूपया के बढ़ोतरी कैल गईल। अब पटना में कमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रूपया में मिली। वही जे घरेलू सिलेंडर के दाम में कोनो बदलाव नहीं भइल। नया दर आज से लागू हो गईल बा। राज्य में सरकारी बस में सफर कैल आज से महंगा हो गईल बा। परिवहन विभाग के तरफ से बस के भाड़ा में 10-15% तक के बढ़ोतरी कैल गईल बा। वही जे सिटी बस के भाड़ा भी 15% तक बढ़ा दिहल गईल बा। बेगूसराय के MP MLA कोर्ट केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एगो मामला में जमानत दे दिहल गईल बा। उनकरा पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान CPI उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर विवादित टिप्पणी करे के आरोप रहे। केंद्रीय मंत्री जमानत मिलला पर कोर्ट के आभार जतवले बाड़न। राज्य में बरखा होके के गति में कमी आईल बा। पिछला 24 घंटा के दौरान सीवान के हुसैनगंज में सबसे ढेर 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कैल गईल। मौसम विभाग आज प्रदेश के कुछ इलाका में हल्का बारिश के संभावना जतावले बा। ए दौरान दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व इलाका के कुछ जिला में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चले के आशंका बावे। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड के में अपराधी लोग कुख्यात गोविंद शर्मा की गोली मार के हत्या कर दी ले। पुलिस के तरफ से ई बतावल गई कि गोविंद शर्मा के फ्लैट में पहले से ही अपराधी छुपल रहे और देखते ही गोली चला दी ले, जैसे उनकर मौका पर ही मौत हो गई। मरे वाला मुजफ्फरपुर के तत्कालीन मेयर समीर कुमार और जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहल। बिहार के होनहार एथलीट पीयूष राज 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतले बाड़न। चीन के हांगकांग में भइल 400 मीटर रिले रेस में कांस्य पदक जीते वाला भारतीय टीम के सदस्य के रूप में पीयूष ई कामयाबी हासिल कैले बाड़न। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पीयूष राज के इस सफलता पर खुशी जतवले और बधाई दिले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार खातिर घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट के घोषणा के लागू करे में तेजी लावे के अधिकारी लोग के निर्देश दिले बाड़न। पटना के लोक सेवक आवास के संकल्प सभागार में आज श्री चौधरी इस संबंध में एगो उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कैले। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत गर्मी के देख के पानी के किल्लत के समाधान और चापाकल के मरम्मत खातिर आज एगो समीक्षा बैठक कैलन। पटना के मंत्रिमंडल सचिवालय में भइल ए बैठक में सभी जिला के जिलाधिकारी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल भइले। श्री अमृत आम लोगन के साफ पानी के सप्लाई पक्का करे के और सभी खराब पड़ल चापाकल के 15 जून तक चालू करावे के निर्देश दिलन। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जे समाप्त भेल। प्रणाम।
1: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर।

हमनी के भी जिम्मेवारी बढ़ता कि हमनी के होशियार रही जा। श्रोता भाई बहन, घर के छोट छोट बच्चा पर विशेष ध्यान देखी। जितने गर्म होता आ तनके सा वर्षा भइला के बाद मौसम ठंडा हो जाता, एकरा बाद जो धूप उगता तो धूप में कितना गर्मी बा ई कहे के नहीं खे, सब कोई देख रहल बा, सब कोई देख रहल बा, लेकिन होशियारी नहीं करत। खाली इतने कैला से ना होई। श्रोता भाई बहन, होशियारी जरूरी बा अपना खातिर, जे आपन होके ओकरा खातिर। एही में खेती के कार्य भी प्रारंभ हो रहल बा। श्रोता भाई बहन, रोहिणी नक्षत्र चल रहल बा, एह में बहुते किसान लोग धान के बिचड़ा डालेलन आ डल्ले भी बाणन, आ कहीं कहीं खेत भी सुखले जोता रहल बा। श्रोता भाई बहन, अभी थोड़ा समय पहले जौन वर्षा भइ रहल है, ओ वर्षा से बहुत सा खरपतवार खेत में जाम गइल बा। अगर ओकरा के इस समय जुताई ओ खेत के हो जाए तो जितना भी खरपतवार बा उ सब सुखा जाई, आगे किसान के फायदा हुई। श्रोता भाई बहन, आज हमने के कार्यक्रम में सबसे पहले माता पिता का हमारे जीवन में महत्व विषय पर चर्चा हुई। आज माता पिता के वैश्विक दिवस मनावल जा रहल बा। एकरा बाद ललन सिंह से लोकगीत सुनल जाई। श्रोता भाई बहन, आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न व्याधियां और निदान, ये भेंट वार्ता के विषय है। आज हम रउआ सभे के जौन भेंट वार्ता सुनवाई ओकर विषय इहे बा कि आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न व्याधियां और निदान। भेंट वार्ताकार होखब श्रीपति सिंह, आ यहां से भेंट कैले बनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। एक जानकारी में आज के विषय बा, दूध हमारे लिए कितना आवश्यक। आज विश्व दूध दिवस भी मनावल जा रहल बा। अंत में कुछ सामयिक सलाह के साथे साथे मौसम पूर्वानुमान पर भी एक नजर डालल जाए। श्रोता सभे, ई रहा आज के कार्यक्रम के संक्षिप्त रूपरेखा। तो जैसन कि हम कहनी है कि आज के चर्चा के विषय बा माता पिता का हमारे जीवन में महत्व। श्रोता भाई बहन, माता पिता इस शब्द के ऊंचाई, इस शब्द के भारीपन महसूस करे के चाहिए। माता के कहीं धरती के संज्ञा दिहल गइल बा तो पिता के आसमान के संज्ञा दिहल गइल बा। कहे कि बाल बच्चा कतनो गलती कर देस, मतारी ओकरा के छुपावे ले। जैसे हमनी के धरती पर कतनो गलती करतन जा, सही करतन जा, लेकिन फिर भी पृथ्वी हमनी के जियावे खातिर का नहीं खे देत, सब कुछ दे रहल बा। फल फूल से लेके अनाज, यहाँ तक कि रहे खातिर मकान तक। श्रोता भाई बहन, पृथ्वी अगर माता बा, माता के संज्ञा बा पृथ्वी खातिर, तो पिता के आकाश के संज्ञा भी कोनो बेजाय नहीं खे। काहे कि पिता के जब जरूरत होला वो समय बुझाला कि धरती पर पिता से बड़ा छाया कोई ना दे सके। कतनो कुछो कर दही, पिता के पास वैसन सामर्थ्य होला यो समस्या के समाधान निकाले लन। श्रोता भाई बहन, हमनी के भी माता पिता के सम्मान सेवा जरूर करे के चाहिए। कहे कि दुनिया में सब कोई मिली लेकिन माता पिता दोबारा ना मिली हन। देखल जला समाज में एगो पिता एगो माता के अगर चार गो संतान बाणन तो उ चारों संतान के अपना सामर्थ्य के मुताबिक पालन पोषण करके कौनो ना कौनो जगह पर जरूर पहुंचा दी। लेकिन इहो देखे में आ रहल बा कि चार गो संतान मिल के भी एगो माता पिता के

आज गांव घर कार्यक्रम संगे हम दिनु भाई सब श्रोता भाई बहिन के राम राम। श्रोता भाई बहिन, देख रहल बनी जा कि मौसम कैसे करवट ले रहल बा। मौसम जब ऐसन करवट ले रहल बा

नैखन संभाल पावत, नैखन सेवा कर पावत। श्रोता भाई बहन, जौन आज हम देव उहे काल लवट के हमरा भिरियाई, ई सबका विचार में रखे के चाहिए, अपना दिमाग में रखे के चाहिए। जे आज माता पिता के सेवा करी, काल गईला उकरो बच्चा उकर सेवा बर्दाश्त करी हन। आ जे माता पिता के सेवा ना करके कहीं वृद्धाश्रम में अगर बैठा आवता तो दिन दूर नहीं थे कि उकर भी बाल बच्चा उकरा के एक दिन ले जाके वही वृद्धाश्रम में पहुंचा आई, बैठा आई। श्रोता भाई बहन, जवन हमनी का चाह तनी जा उ पहले बांटे के पड़ी। अपना खातिर सम्मान अगर चाह तनी जा कि हमनियों के सम्मान वैसन मिलो तो वैसन बांटे के चाहिए। आज हमनी के समाज में माता पिता दूगो बाण, एगो अपन माता पिता, एगो पत्नी के माता पिता, यानी कहीं कि एगो अपन माता पिता, एगो सास ससुर। वही तरह वो लड़की के भी यह दिमाग में रखे के बा कि एगो जैसन हम माता पिता के छोड़ के ऐनी तो एजा सो सास ससुर के माता पिता ही समझी, तबे जाके भविष्य बढ़िया रही। श्रोता भाई बहन, तनकी सा मन में दुराव पैदा करब तो काल गिला उ दुराव और ज्यादा हो जाई, नतीजा खुशी ना मिली बल्कि तकलीफ मिली, दुख मिली। ऐसे बचे के बा हमनी के। श्रोता भाई बहन, माता पिता के सेवा करी हमनी के जीवन में एकर बहुत बड़ महत्व बा। हमनी के देख रहल बनिया कि समाज कौना रास्ता पर चल रहल बा, वो रास्ता के बचावे के बा भी हमनिये के, रास्ता बढ़ावे के भी बा हमनिये के। तो हमनी के काहे ना ऐसा रास्ता से चलल जाओ जौन की काल गईला कोई उंगली मत उठाओ, काल गईला इहे सब कोई कहो कि देखत फलाना कितना बढ़िया काम कैलन। आयकर फायदा रउआ के समय पर मिली आ जरूर मिली। अब आई हमनी का ललन सिंह से एगो लोकगीत सुनल जाओ, तो सुने के।

0: अभी ललन सिंह गहमरी से ही लोकगीत सुनी जा, बड़ा निमन लगल। इतना बढ़िया लोकगीत सुनौला खातिर ललन सिंह के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता भाई बहन, अब समय बा भेंट वार्ता के। जैसन कि हम कहले रही, आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न व्याधियां और निदान, ई भेंट वार्ता के विषय बा। भेंट करता बनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, आ भेंट वार्ताकार बनी श्रीपति सिंह। तो आई हम निकाई भेंट वार्ता सुनल जाओ आ लाभ उठावल जाओ।
1: श्रोताओं, अक्सर सुना जाता है कि कोई नई बीमारी आ रही है। पहले के समय में इतनी बीमारियां नहीं थीं, लेकिन आज आधुनिक समय में तमाम बीमारियां आ रही हैं और उनका निरंतर निदान खोजने का प्रयास हो रहा है। क्यों आ रही हैं बीमारियां, पहले क्यों नहीं थीं, कारण क्या है, इस बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न व्याधियां और उनका निदान, और इस पर जानकारी देंगे डॉक्टर श्रीपति सिंह। आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और PPCL अमझोर तथा NTPC नबीनगर में आप चिकित्सा पदाधिकारी रह चुके हैं। वर्तमान समय में आप स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करते हैं तेलकप मोड़ अमझोर में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज पुनः कहा जा रहा है कि हमें पुरानी जीवन शैली की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि ये जो तमाम बीमारियां आई हैं ये आधुनिक जीवन शैली से आ रही हैं, क्या इस बात में सच्चाई है?
2: पहले तो इस स्टूडियो में आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आज के परिवेश में जो व्याधियां उत्पन्न हो रही है सारी हमारी जीवन शैली के कारण ही हो रही हैं
1: जी।
2: अब उसमें सबसे पहले शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम
1: जी,
2: ये शरीर एक ऐसा यंत्र है जिससे सारे धर्म कर्म को निश्चित किया जाता है, संपन्न किया जाता है
1: जी।
2: और इसलिए कहा गया है हमारे यहाँ, इसलिए इसको स्वस्थ रखिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर कर्म करने का सर्वप्रथम साधन है। द बॉडी इज द फॉरमोस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ डूइंग गुड्स
1: जी।
2: तो दोस्तों, इसके द्वारा

0: सारा कार्य संपन्न होता है और हमारे चार जो पुरुषार्थ हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूलभूतम कलेवरम तस्य च सर्वार्थ संसिद्धये भवेत्यादि निरामयम, ये चार पुरुषार्थ जो हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, आज के युग में धर्म और मोक्ष दोनों गौण हो गया है
1: जी।
0: केवल काम और अर्थ रह गया है
1: जी।
0: तो इससे भी जो चीजें हैं हम लोग के सामने आ रही है वो
1: बीमारियां
0: हो पाई, धर्म वाली कर्म हम लोग कर नहीं रहे हैं
1: जी।
0: केवल अर्थ और काम के पीछे दौड़ रहे हैं
1: जी। जी डॉक्टर तो, साहब आप चूंकि आयुर्वेद से ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर रहे हैं, आप एक चीज बताइए कि पहले तो चूंकि आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और हम लोग क्या खाएं क्या पिए कैसे रहें ये सारी चीजें आयुर्वेद में वर्णित हैं। सबसे पहले जो इस चीज से यानी कहिए कि आयुर्वेद से हम लोग हट गए हैं, ये हमारे शरीर को व्याधियों से घेरने के लिए यही काफी चीज है, तो इस पर हम पहले जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद क्या है, किसको कहेंगे आयुर्वेद?
0: देखिए आयुर्वेद जीवन विज्ञान है, साइंस ऑफ लाइफ। तो हम लोग आयुर्वेद में केवल रोग की व्याधि का ही निराकरण नहीं करते हैं, हम लोग आयु कैसे लंबी हो
1: जी।
0: इसके बारे में भी हम लोग के यहाँ सोचा गया है और इस तरह से आयुर्वेद जो है हमारा सब चीज के बारे में निरूपण करके और इस शरीर को स्वस्थ रहे ऐसी कामना करता है
1: जी। अब रही बात की अगर आयुर्वेद से स्वस्थ रहे आदमी तो स्वास्थ्य किसको कहते हैं?
0: हाँ, समदोष तीन दोष हमारे यहाँ मूल रूप से हैं, वात पित्त कफ। तो वात पित्त कफ ये समावस्था में रहे हम उसको आरोग्य कहेंगे, कहा भी गया है। मैंने दोष का भी समता ही रोग है
1: जी
0: और दोष की साम्यता ही आरोग्य है
1: जी।
0: ये तो दोष हुआ, समदोष। समाग्नि से अग्नि 13 प्रकार की होती है
1: जी,
0: रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र, ये 7 धातु है। तो ये धातुओं की अग्नि अलग होती है, इसके बाद पंच भूताग्नि होती है
1: जी,
0: वो 5 भूताग्नि है, वो 7, 5, 12 और 1 जठराग्नि
1: जी,
0: 13 अग्नि होती है। दोष तीनों समावस्था में हो, सारे अग्नि समावस्था में हो, सम धातु मलक्रिया और धातुएं जो है सम रूप में समता रूप में रहें तो
1: आदमी स्वस्थ रहेगा
0: मलक्रिया इसके साथ मल और क्रियाएं जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है जो हमारे शरीर से विकार को बाहर निकलता है वो क्रियाएं भी समावस्था में हो सही रूप से कार्य करे तो इसके साथ प्रसन्न आत्मा इंद्रिय और मन यदि प्रसन्न है तो उसको स्वस्थ कहते
1: जी। जी अब रही बात कि जो आधुनिक जीवन शैली है यह आयुर्वेद से कैसे अलग है या कहिए बुजुर्गों का जो की शैली थी उससे कैसे अलग है?
0: ये देखिए हमारे यहाँ स्वस्थ वृत्त हाइजीन और हाइजीन में बताया गया है कुछ वेग जिसको कहते हैं अधारणीय वेग हैं, 13 जो है अधारणीय वेग है जिसको धारण नहीं करना चाहिए उसको तुरंत कीजिए
1: जी।
0: जैसे मलमूत्र का त्याग, शुक्र का त्याग और अपान बाहु बमन छींक डकार जम्हाई भूख प्यास आंसू निद्रा और परिश्रम से जो श्वास आता है उसको भी हम लोगों को दबाना नहीं चाहिए। ये है अधारणीय वेग और 5 है धारणीय वेग। 5 धारणीय वेग में है लोभ क्रोध भय शोक अभिमान
1: जी,
0: निर्लज्जता ईर्ष्या और वासना, संपत्ति किसी की छीनने की प्रवृत्ति, ये सब को धारणीय वेग है, इसको धारण करना चाहिए। इस तरह की पिपासा मन में इच्छा नहीं रखनी चाहिए
1: जी। जी
0: तो ये सब चीज पहले हमारे यहाँ था, आज के परिवेश में लोग इसके जस्ट उल्टा हो गए हैं, सभी विकृतियां आ गई है
1: जी।
0: किसी भी तरह से इस अर्थ युग में आदमी चाहता है कि किसी की संपत्ति हड़प लें, कहां से धन उपार्जित कर लें
1: जी।
0: तो ये प्रज्ञापराध होता है और प्रज्ञापराध जब होगा तो आपको अंदर अंदर कचूटते रहेगा
1: जी। जी
0: क्योंकि आपके मन में तो चेतन और चेतन दोनों मन है
1: जी,
0: और चेतन तो तुमको करा देता है कार्य के कर लो, अचेतन धिक्कारता है अंदर अंदर
1: जी
0: कि भाई तुम गलत किया है
1: जी। जी एक चीज और है डॉक्टर साहब की पहले लोग मोटे अनाज खाते थे
0: हाँ।
1: और उसके अलावे शाम में जल्दी सोना जल्दी जगना ये चीजें होती थी, लेकिन वर्तमान

0: वर्तमान समय में बहुत लेट नाइट में लोग जगते हैं और उसके बाद बहुत देर तक सोते रहते हैं, तो इस कारण भी बहुत सारी व्याधियां आई हैं।
1: ऐसा आज के परिवेश से हम लोग देखे हैं कि आज के बच्चे रात में 1 बजे 2 बजे सोते हैं। इसका कारण क्या है कि ये बच्चे जो हैं उठेंगे 9 बजे दिन में। मेरे यहाँ ये अवधारणा है कि जो आदमी सूर्योदय नहीं देखा उससे अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है। कारण ब्रह्म मुहूर्त में जगने पर हमारी प्रकृति जब अपना खजाना लुटाती है, शीतल मन सुगंध जो हवा है ये ब्रह्म मुहूर्त में बहती है और उसमें वो ऑक्सीजन के 3 आयन्स, O2 ऑक्सीजन का सूत्र होता है लेकिन O3 ऑक्सीजन उसमें पाया जाता है जो जीवनदायिनी होता है। तो जिस समय प्रकृति अपना खजाना लुटा रही है आप सोए हुए हो कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए, मन शांत रहता है। आज ही 9 बजे तक सोकर उठेंगे, बस सुंघाते रहेंगे, पेट में बात का प्रकोप हो जाएगा, भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, कब्जियत हो जाएगा, मन चिड़चिड़ा रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा
0: जी।
1: तो इस तरह से ये लोग रोग ग्रसित होते जाएंगे। दूसरी चीज, हमारे पूर्वज एक बताते थे कि समय पर खाना चाहिए, 100 काम छोड़कर खाना खाइए, 100 काम छोड़कर स्नान कीजिए। उनके मन में एक कल्पना थी 8 बजे करना है हमको, तो 8 बजे जब भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में जो एंजाइम्स आते हैं, स्टोमिक में 5 तरह का एंजाइम्स आता है, एंजाइम्स आकर यहाँ पर वेट करता है कि हमको भोजन मिलेगा, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आता है। तो 8 बजे वेट कर रहा है कि हमको भोजन मिलेगा, हम उसको पचाएंगे, आप दिए 10 बजे। 10 बजे क्या हुआ कि ये तो अपना एंजाइम से यहाँ पर जला उला के चला गया, मिला नहीं उसको भोजन तो जलाएगा, तो चला गया। फिर 10 बजे खाना खाए, 10 बजे खाना खाने के बाद भोजन पड़ा हुआ है, एंजाइम्स तो रहा नहीं तो वो सड़ रहा है, ये कारण है
0: जी जी।
1: अध्यसन, एक शब्द है अध्यसन। अध्यसन में क्या होता है, आजकल के फैशन में देखे हैं, खाना खा के घर से चला, कहीं पार्टी में गया, तुरंत 1 घंटा बाद ये भोजन जीर्ण नहीं हुआ, पचा नहीं, फिर खा लिया। खाने पर खाने को अध्यसन कहते हैं
0: जी।
1: उससे क्या हुआ कि फूड पॉइजनिंग होता है
0: जी,
1: डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, ये सब सारा कारण है
0: जी।
1: तो ये कारण है, आज जीवन शैली हम लोग का इतना बदल गया है। बड़े का आदर, पहले बड़े का आदर करते थे, आशीर्वाद प्राप्त होता था, आज सारी चीजें खत्म होती जा रही है, हमारे सामाजिक मूल्य ध्वस्त होते जा रहे हैं
0: जी,
1: जिसका कारण है कि आज हम विगलित स्वास्थ्य की ओर जा रहे हैं
0: जी जी
1: जी।
0: तो इसका निवारण क्या है?
1: निवारण है हम ब्रह्म मुहूर्त में जगें
0: जी।
1: व्यायाम नहीं कर पाते हो, तुम इतना व्यस्त हो कि अपने शरीर के लिए टाइम नहीं दे सकते हो। आदमी को बलार्ध का लक्षण होने तक व्यायाम करना चाहिए निश्चित रूप से। व्यायाम करते समय अपने वय और बल के अनुसार, जितना आपका उम्र है और शक्ति है उसके अनुसार व्यायाम जरूरी है
0: जी।
1: तो व्यायाम करने से सभी तंतु, सभी तंत्र, अवयव, अंग सुदृढ़ रहते हैं और उनमें सर्कुलेशन होता है।
2: श्रोता भाई बहन, अभी हमने का डॉक्टर श्री प्रति सिंह से के या डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी के ही भेंट वार्ता सुननी जा, बड़ा बढ़िया लागल। आदमी के अपन जीवन शैली कैसे सुधारे के चाहिए यहाँ के बतौनी, इतना बढ़िया बढ़िया बात बतौला खातिर ये दोनों लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। आ ऑप्शन दे सुन लेवे के
3: पाक
4: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
3: अब घर, दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करें आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
4: आकाशवाणी के चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
3: त बुकिंग खातिर संपर्क करें 8700014242 पर।
4: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
2: अभी संदेश सुननी जा, अब पुनः अपना कार्यक्रम के तरफ लौटे के, जहाँ की अब हमने के जाने के बाद एक जानकारी के

विषय दूध हमारे लिए कितना आवश्यक। श्रोता भाई बहन, आज विश्व दूध दिवस मनावल जा रहल बा। दूध तो कहीं के नहीं है कि छोट रहला पर माई के दूध आ बड़ भइला पर गाय के दूध से आदमी के पोषण होला। श्रोता भाई बहन, 1950 में जहां हमनी के देश में दूध के उत्पादन 1.7 करोड़ टन रहे, वही जे 2025 में हमनी के देश में दूध के उत्पादन 24 करोड़ टन हो रहल बा। दुनिया के 25% दूध उत्पादन भारत में होला। भारत दुनिया के सबसे बड़ उत्पादक देश है। राष्ट्रीय दूध विकास कार्यक्रम जोन बा उ 31,000 दूध उत्पादक समिति के पुनर्जीवित कैले बा। हमनी के देश में डेयरी सेक्टर जोन बा उ हमनी के देश के अर्थव्यवस्था में 5% के योगदान देला। एकरा से 8 करोड़ लोग के रोजगार मिलल बा। एक दशक पहले 2014 से 2025 में देश में दूध उत्पादन में 69% के वृद्धि भइल बा। हर भारतीय के आज के समय में 485 ग्राम दूध प्रतिदिन मिल रहल बा, जवन की वैश्विक औसत जौन बा 328 ग्राम से कहीं अधिक बा। श्रोता भाई बहन, दूध इतना जरूरी है, एकर उत्पादन बढ़ाई आ दूध के सेवन करी ताकि शरीर मजबूत रहो। आ देखी अब कुछ सामयिक सलाह जान लिया जाओ। जैसन कि अगर पशुपालन रुआ कैले बनी, अगर गाय रखले बनी, तो गला घोटू आ लंगड़ी रोग से बचाव खातिर टीकाकरण करावे की आवश्यकता बा। आ सब दुधारू पशु के टीकाकरण जरूर करा दही। नया गेहूं के भूसा खियावे से पहले 2 घंटा पानी में फुला दही। 50 ग्राम खनिज मिश्रण आ 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला के खिलाई। श्रोता भाई बहन, अब हमनी के मौसम के सलाह जान लिया जाओ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि 30 मई से 3 जून के दौरान जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी, जो उनकी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बह सकेला, चले के संभावना बा। हल्का से मध्यम वर्षा होखे के अनुमान बा। एकरा बाद मौसम शुष्क रहे के संभावना बा। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% आ दोपहर में 20 से 25% रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के संभावना बा। श्रोता भाई बहन, एक कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहन संतोष कुमार। तो अब घड़ी इशारा कर रहल बा कि कार्यक्रम के समय उड़ा रहल बा। तो चले चले कबेरी गांव घर कार्यक्रम सुने वाला सब श्रोता भाई बहन के दीनू भाई के तरफ से राम राम।

अभी आप सुन रहे थे हमारा ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे केंद्र से अगली जी सुनिए भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत।

दुल्हा गंगा पार के। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का यह गीत महेंद्र कपूर की आवाज में, गीत और संगीत लक्ष्मण शाहवादी का था। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। अब हम सुन रहे हैं सुरेश वाडेकर और अलका याग्निक की आवाजों में बिहारी बाबू फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है ब्रिजकिशोर दुबे ने और संगीत दिया है चित्रगुप्त ने।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में आप सुन रहे थे सैया हमार फिल्म का ये गीत। विनय बिहारी के बोल थे, ताबुन और सुजीत कुमार ने इसे संगीत से संवारा था। और अब श्रोताओं, सांझ गीत कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत जसपाल सिंह की आवाज में। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का है।

0: जसपाल सिंह के गाये नदिया के पार फिल्म के इस गीत के साथ ही भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत अब समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश। सोमवार का दिन है। आ गया आपका दोस्त राजेश। कैसे हैं आप सब युवा साथियों? इन दिनों नए कोर्सेज की चर्चा कर रहा हूं, खास करके वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है। आज भी एक नया क्षेत्र है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। इसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चर्चा की थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और दूसरा कोर्स था आप सबों के लिए बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। आज परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे कि कैसे आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। और ये आया है जिसकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, बहुत ही

0: उम्दा संस्थान गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार। जी हाँ, ढेर सारी बातें होंगी। उससे पहले हम शेयर करते हैं अपना मोबाइल नंबर कि अगर आपको कोर्सेज के विषय में जानकारियां चाहिए, किसी भी टेक्निकल कोर्स के विषय में जानकारी चाहिए, चाहे हेल्थ सेक्टर से हो, मेडिकल के लिए हो, पैरामेडिकल के लिए हो, नर्सिंग के लिए यानी बीएससी नर्सिंग, एएनएम जीएनएम के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, फार्मेसी के लिए हो, या फिर जर्नलिज्म के लिए, लॉ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, किसी भी क्षेत्र में अगर जो आपको जानकारियां चाहिए तो ये नंबर इस्तेमाल कीजिए। नंबर है 9431899002, 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800121001, 1800121001, और एक वेबसाइट भी है जहां जा सकते हैं आप, www.gnsu.ac.in। हमने कहा, राजेश हमेशा कहता है कि टेक्निकल पढ़ाई कीजिए और करियर को और अपने जिंदगी को एक नई उड़ान दे दीजिए। कहते हैं ना कि बुनियाद मजबूत कीजिए। बहरहाल आज समय नहीं जाया करते हुए आप सबों को जानकारी देते हैं कि एक और नया कोर्स आया है, वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है और हेल्थ सेक्टर में एक मुकाम बनाना चाहते हैं, वो क्षेत्र है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में जानकारी हम दिलवाते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं, आइए इनसे ही हम इनकी जानकारी लेते हैं, इनका परिचय लेते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुहार।
0: प्रोफेसर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है बुनियाद के आज के अंक में। पूरा बिहार और झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ चुका है युवाओं का। जी हाँ, उनके गार्जियन भी ये कार्यक्रम सुनते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानकारियां दें।
1: बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, हाँ, ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसमें जो परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, दे आर वर्किंग ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक प्रणाली पे वो काम करते हैं। जब किसी पेशेंट का ओपन हार्ट सर्जरी होता है, उस दौरान उनकी हार्ट और लंग्स को निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो उस दौरान जब वो हार्ट और लंग जो कि अगर निष्क्रिय है तो पेशेंट कैन डाई, तो उसको मेंटेन करने के लिए देयर इज अ लाइफ सपोर्ट मशीन जिसको कहते हैं हार्ट लंग मशीन, उसको ऑपरेट करने का काम यह परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के जने करते हैं। यानी उस पर्टिकुलर ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट वो इस परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के हाथों में ही रहती है। तो इनका काम बहुत ही स्पेशलाइज्ड और बहुत ही ज्यादा, आप इसको कह सकते हैं कि निगरानी वाला महत्वपूर्ण कार्य है।
0: प्रोफेसर नीरज, पहली बार बिहार और झारखंड में बुनियाद कार्यक्रम में ये जो कोर्स है ना परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का, ये जा रहा है लोगों के बीच। हाँ, लोगों को जानकारियां पहुंच रही है कि ये कोर्स भी होता है और ये कोर्स गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में, और नीरज जी आप ही के देख रेख में ये कोर्स चलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में कौतूहल होगा और अभी जो आपने आंसर दिया है उससे संतुष्ट हुए होंगे, लेकिन वो कौतूहल अभी बना हुआ होगा। हम एक बार फिर चाहेंगे कि उस कौतूहल को आप शांत करें, और अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप सीधे सीधे फोन पर बात कर लें, 9431899002, 9431899002 और 1800121001। हाँ नीरज जी,
1: हाँ, यह कोर्स जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत ही ज्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्स है, और ये कोर्स मेरे ख्याल से बिहार झारखंड में बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशन होंगे, या तो ना के बराबर होंगे बिहार में, या बहुत कम ही होंगे जहां ये होता है। और ये कोर्स जैसे बताया कि इतना स्पेशलाइज्ड है कि बच्चे इसमें इतने स्किलफुल होते हैं कि एक पेशेंट के ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान उनको उस मशीन को ऑपरेट करके उन्हें जिंदा रखना होता है, ताकि उनके पूरे शरीर में, पेशेंट के शरीर में ब्लड की और ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन रहे, ये इनका काम होता है।
0: वेल, बहुत अच्छा। साथ साथ हमारे युवा साथियों और उनके माता पिता को प्रोफेसर साहब ये भी बताते चलिए कि ये कितने

0: साल का कोर्स होता है?
1: ये 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है।
0: अच्छा, हमें लगता है कि पढ़ाई से ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर की ज्यादा जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये आप जैसे मालूम है कि हमें पेशेंट पे ये काम करना है तो उसके लिए एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही जरूरी है। और श्रोताओं को ये बताना भी चाहूंगा कि हमारा जो यूनिवर्सिटी, हमारे पास अपना इन हाउस हॉस्पिटल भी है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1200 बेडेड हॉस्पिटल, जहां पर हमारे पास एन नंबर्स ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग, नंबर ऑफ पेशेंट्स आर गोइंग टू ओपन हार्ट सर्जरीज, जिसमें कि हमारे यहां उनको अच्छा एक्सपोजर ही मिलने की पूरे चांसेस हैं। और चूंकि हमारे यहां अपने यहां एक प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट वैसे काम भी कर रहे हैं, उनकी देखरेख में ये लोग अच्छा सीख भी लेंगे।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद और मैं हूं राजेश। हमारे साथ प्रोफेसर नीरज हैं जो जानकारी दे रहे हैं एक नए कोर्स परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में, जो इसी सत्र से गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास में शुरू हुआ है, वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है। और आपको बताएं कि इससे पहले हमने 2 कोर्सेज की चर्चा की थी जिसकी शुरुआत भी इसी सत्र से हुई है और इसके लिए भी इंटरमीडिएट बायोलॉजी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, और दूसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। इन दोनों और इन तीनों अगर परफ्यूजन टेक्नोलॉजी को जोड़ ले मित्रों तो बहुत ही उम्दा क्षेत्र है। आप चाहें तो अधिक जानकारियां ले सकते हैं इन नंबरों से 9431899002 और दूसरा नंबर है 1800121051। प्रोफेसर नीरज, एक बात बताइए, जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे आपके यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, तो आपका जैसा कि बताया कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, 1200 करीब बेड है वहां पर, तो हमें ये जानकारी चाहिए आपके माध्यम से पूरे बिहार और झारखंड में ले जाने के लिए कि क्या यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को इसका लाभ मिलता है, और मिलता है तो कब से और कितना?
1: जी, हमारे बच्चों की वहां पर रोस्टर लगती है, हर महीने वाइज, मंथली वाइज उनकी वो रोस्टर बनती है और उसके हिसाब से उनकी वहां पर पोस्टिंग लगती है ड्यूरिंग देयर एकेडमिक्स, 3 साल की पढ़ाई के दौरान भी, और जब 1 साल का इंटर्नशिप करते हैं उसमें भी उनकी रोटेटरी इंटर्नशिप की रोस्टर बनती है, फिर वहां वो प्रैक्टिस करते हैं, वो इंटर्नशिप करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा जान करके कि जो इस क्षेत्र में पहले के दूसरे कोर्सेज हैं वहां के बच्चे ड्यूटी करते हैं और वहां अपनी काबिलियत प्रूफ करते हैं, और अब ये जो 3 कोर्स हम बता रहे हैं लगातार, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज और बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, जी हाँ, क्या एक बात बताइए कि अगर यहाँ के बच्चे वहाँ जाकर अच्छा करें तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है उसमें क्या आप उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी नौकरी लगती है, अपने बच्चों को लेते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, ये हमारी तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि हमारे और भी पिछले कोर्सेज, पुराने कोर्सेज के बहुत सारे बच्चे हमारे खुद के हॉस्पिटल में एब्जॉर्ब हुए भी हैं और वो हमारे परस्पर संपर्क में भी रहते हैं, उनसे हम अपने बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते रहते हैं, उनको कई दफा हम एलुमनाई लेक्चर भी कराते हैं, करियर काउंसलिंग भी उनसे कराते हैं, तो ये तो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस पे हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज भी करते हैं।
0: हम चाहेंगे अब आपसे कि पूरा बिहार और झारखंड का बहुत बड़ा हिस्सा सुन रहा है हमारे बुनियाद कार्यक्रम को, वर्षों हो गए इस कार्यक्रम को लेकर आते आते बुनियाद को, और इस पर लोग भरोसा रखते हैं, युवा साथी भरोसा रखते हैं, गार्जियन भरोसा रखते हैं और भरोसा रखते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार पर भी। हम आपसे प्रोफेसर नीरज ये जानना चाहेंगे कि इस कोर्स बोले तो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में कैसे बच्चे आ सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सीटें हैं, ब्ला ब्ला जितनी भी जानकारियां हैं आप दे दीजिए।
1: ये 10 इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विथ 45% मार्क्स इन ऑल टुगेदर, और हमारे यहाँ सीट इसकी है 10 हमने रखी है अभी, और आगे भविष्य में देखेंगे हम इसको बढ़ाना होगा, पर फिलहाल हमने अभी 10 सीट्स रखी है इनकी। और ये जैसे मैंने पहले बताया 4 साल का कोर्स है, 3 साल की पढ़ाई होगी, 1 साल का इंटर्नशिप होगा, और यह कोर्स कराने के लिए हमारे पास अपना खुद का

0: infrastructure and all the facilities are available with our postings done in NMCS.
1: Is course ko karne ke baad rozgar kya demand kya hai, kya demand hai is course ki?
0: ये जैसे कि मैंने बताया कि आजकल ओपन हार्ट सर्जरी बढ़ती जा रही है. अब जो जब ओपन हार्ट सर्जरी बढ़ेगी तो पेशेंट्स के हार्ट एंड लंग्स को निष्क्रिय किया जाएगा, उस दौरान परफ्यूशनिस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, हर जगह पड़ती है. तो इसलिए इस कोर्स की डिमांड भी धीरे धीरे वैसे ही बढ़ती ही जा रही है. साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहां भी अब स्पेशलाइज्ड ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, तो वहां भी परफ्यूशनिस्ट अपॉइंट किए जा रहे हैं, बहाल किए जा रहे हैं, तो वहां भी इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है. और प्राइवेट हॉस्पिटल का कहना ही नहीं, आप बहुत सारे आपने भी जानते होंगे कि हर जगह जगह सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल खुल रहे हैं जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है. और एक और ऑप्शन होता है विदेशों में करियर का ऑप्शन. जैसा कि मैंने बताया सुपर स्पेशलाइज्ड ये कोर्स है, तो इनकी डिमांड बाहर भी बहुत ज्यादा है, विदेशों में भी बहुत ज्यादा है. तो बहुत सारे बच्चे इंडिया में पढ़ के बाहर भी अब्रॉड सेटल हो चुके हैं, तो वहां भी इनके पास चांसेस हैं. और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं, टीचिंग में आना चाहते हैं, तो दे कैन गो फॉर एमएससी मास्टर्स करके ये टीचिंग में भी आ सकते हैं.
1: अच्छा नीरज जी, ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जो बच्चे रोजगार नहीं करना चाहे या अपना क्लिनिक खोल कर बैठे हैं, तो क्या उन्हें कॉल पर भी तो बुलाया जाता होगा?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉल पे बुलाया जा सकते हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे करते भी हैं कि उनका दे हैव द टाई अप विद और कॉन्टैक्ट विद 10 or more than 10 or 20 हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां जब कभी ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो दे आर इनको ऑन कॉल पे बुलाते हैं ऐसे लोगों को, ये वहां जाके हर जगह से अपना काम करके दे कैन चार्ज.
1: बहुत ही उम्दा कोर्स है. हाँ बहुत ही, हाँ पैसा कमाया जा सकता है, करियर बनाया जा सकता है, लोगों की सेवा की जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में अगर आप दाखिला लेते हैं, पढ़ाई करते हैं. और ध्यान रखिए, जैसा कि प्रोफेसर नीरज ने बताया है कि सत्र से सिर्फ 10 सीटें ही हैं, इसलिए देर नहीं कीजिए. थैंक यू डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन एक मिनट, आपसे एक जानकारी आपने दी, आपके सामने ही लोगों को बोल दें कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज में भी मात्र 30-30 सीट ही है. अगर उधर की तरफ रुख करते हैं तो आपको जल्दी करनी होगी, हाँ प्रयास करना होगा. और अब थैंक यू प्रोफेसर नीरज, और उम्मीद करते हैं कि हम आपको जब भी बुलाएंगे आप आएंगे. समय खत्म हो रहा है. प्रोफेशनल पढ़ाई करने की हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए. बीएड स्पेशल एजुकेशन की भी पिछले दिनों हम बहुत चर्चा कर रहे थे, वहां भी बहुत सारे संभावनाएं हैं, आप चाहें तो जा सकते हैं. फिलहाल नोट करें गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का ये नंबर जिस पर आप और अधिक जानकारियां ले सकते हैं. नंबर है 9431899002. तो राजेश को दीजिए इजाजत. थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जम्मू और सासाराम रोहतास बिहार कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का राजेश को मौका दिया. नमस्कार.
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार.
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है. हमारे केंद्र से प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास.

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और इसमें हम आपको जानकारी दे रहे हैं कैमूर और रोहतास जिले की कुछ स्थानीय गतिविधियों के बारे में। कैमूर जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले के सभी कार्यालयों में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया गया। जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में विभिन्न विभाग से संबंधित 15 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका नियमानुसार त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।

रोहतास जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आगामी 2 जून 2026 को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी रोहतास श्रीमती उदिता सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बीपीआरओ तथा विभिन्न विभागों के प्रखंड एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सहयोग शिविर के सफल आयोजन को लेकर जारी सभी दिशा निर्देशों एवं आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान, सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना तथा विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाओं को लोगों तक सुलभ बनाना है।

बिहार सरकार के निर्देशानुसार आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचे के उद्देश्य से 2 जून को रोहतास जिले के सभी नगर निकायों में वार्डवार सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में आम नागरिक अपनी समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों से संबंधित आवेदन जमा कर सकेंगे, जिनके निष्पादन की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी।

जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री रोशन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा, अवैध अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग पर नियंत्रण हेतु एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय एवं परिवहन विभाग के निर्देशों के आलोक में प्रमुख निर्णय लिए गए। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यातायात व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अपर संभारता डीएसपी, डीटीओ, एनएचआई के प्रतिनिधि सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे अंदाज फिल्म का ये गीत। और अब हमारे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हमारे पटना केंद्र से रिले होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधान परिषद की रिक्त 10 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 8 जून तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान। और आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की हो रही है शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 10 सीटों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आज जिन 10 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हुई है उनमें से 9 सीटों के लिए द्वि

0: वार्षिक चुनाव हो रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई एक सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तक निर्धारित है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। गौरतलब है कि डॉ कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस और सुनील कुमार सिंह समेत 9 विधान पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। पटना में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने सभी परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की भी समीक्षा बैठक की।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समाज कल्याण विभाग की बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में सुनिश्चित रूप से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं की तकनीकी माध्यम से निगरानी करने और बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने और आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभाग की सभी योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। समाचार कक्ष से नंदिनी।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान एक महीने तक चलेगा।
3: एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
4: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
3: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: इस अवसर पर पटना के कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसानों को रासायनिक खाद की जगह हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।
5: हम सब बिहारी माँ भारती के संतान इस अभियान को पर्यावरण के लिए, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए हम खेत बचाने का अभियान में सम्मिलित हों। हर व्यक्ति अपने जमीन के एक चौथाई में कम से कम प्राकृतिक खेती करे, ये हमने आह्वान किया है।
1: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कंप्यूटर आधारित माध्यम से कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर पुनर्परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा रद्द होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। कल ही राज्य की पंचायतों में भी सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। सहयोग शिविर से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में सरकारी बसों से सफर आज से महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में 10-15% तक की बढ़ोतरी की है। सिटी बसों के किराए में भी 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 53.50 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब पटना में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रूपये में मिलेगा। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

0: राज्य सरकार ने गर्मी को देखते हुए आमजनों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और सभी खराब पड़े चापाकलों को 15 जून तक चालू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में पेयजल संकट के समाधान और चापाकलों की मरम्मति को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। श्री अमृत ने भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में संवेदनशील मामलों को देखते हुए जिलाधिकारियों को विशेष रूप से चौकस रहने के निर्देश दिए। उन्होंने ज्ञान भारत मिशन के तहत चल रहे सर्वेक्षण की प्रगति की भी समीक्षा की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। जेईई एडवांस 2026 में कयाची के शुभम कुमार ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों, अभिभावक और कड़ी मेहनत को दिया है।
2: टॉप करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक है कि हम जितना कर सकते हैं, जितना भी हमने पढ़ा हो, जितना भी हमारी पोटेंशियल है, उसको एटलीस्ट 80-90% रिफ्लेक्ट करना अपने फाइनल पेपर में, आई थिंक वही काफी होता है। बिकॉज अगर अपने आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब हम जितना कर सकते हैं हमने अपनी पूरी चीज जान लगा दी हो, तो उसके लिए तो आई थिंक अपना विल पावर पूरा होना चाहिए कि अगर करना है तो करना है, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभम कुमार को इस सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। केंद्रीय मंत्री और गया के सांसद जीतन राम मांझी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शुभम कुमार को बिहार का गौरव बताते हुए इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद और पटना समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उत्तरी भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की खबर है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के हुसैनगंज में सबसे अधिक 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
0: जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की 21 जून को पटना में बैठक होगी। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार के निर्वाचन पर परिषद की औपचारिक मुहर लगना है।
4: राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर 25 जनवरी को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। इस निर्वाचन की औपचारिक पुष्टि के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक आगामी 21 जून को पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित किया जा रहा है। 21 जून को अन्य कई बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।
0: नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में रवि संगम की पुस्तक रामायण परिपथ बिहार का लोकार्पण किया। इस शोध पुस्तक में प्रभु श्री राम की बिहार यात्रा से जुड़े स्थलों का जिक्र है। इस अवसर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार, राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल

0: सुलभ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार संग्रहालय की ओर से पटना में कल से 7 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को टेराकोटा कला, मुखौटा निर्माण कला तथा कहानी लेखन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप का उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह करेंगे। खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार आज कटिहार के विकास भवन में 20 सूत्री और आपदा की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से मरने वाले लोगों के परिजनों को राहत अनुदान राशि अब स्थानीय जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में ही दी जाए। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड में अपराधियों ने कुख्यात गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि गोविंद शर्मा के फ्लैट में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुजफ्फरपुर के तत्कालीन मेयर समीर कुमार और जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 83 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन किया। बिहार के एथलीट पीयूष राज ने 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। चीन के हांगकांग में आयोजित 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य के रूप में पीयूष ने यह उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीयूष राज की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए उन्हें बधाई दी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सोनपुर के रितेश रंजन ने स्वर्ण पदक जीता है। पटना में संपन्न राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शेखपुरा के खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधान परिषद की रिक्त 10 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 8 जून तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान। और आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की हो रही है शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी।
2: नवादा जिले में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस चरण के तहत मकानों की गणना, मकान सूचीकरण तथा अन्य आवश्यक जानकारियां एकत्र की गई है। इससे पहले ऑनलाइन स्व गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों ने पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज की। जिले के प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात में सैलानियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रतिदिन अधिकतम

0: की है। इससे पहले ऑनलाइन स्व गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों ने पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज की। जिले के प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात में सैलानियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रतिदिन अधिकतम 8000 पर्यटकों के प्रवेश की सीमा निर्धारित कर दी है, साथ ही प्रवेश शुल्क में भी वृद्धि की गई है। सोमवार से शुक्रवार तक 10 रुपए की जगह अब 100 रुपए तथा शनिवार और रविवार को 20 रुपए की जगह 200 रुपए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। नवादा जिले के रजौली प्रखंड की पश्चिमी पंचायत की मुखिया सुभद्रा सिंह को पंचायत स्तर पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें 3 जून को नई दिल्ली में आधारभूत संरचना विकास, जल संरक्षण, पौधारोपण तथा जनहित से जुड़े विभिन्न कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस उपलब्धि से पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मुखिया सुभद्रा सिंह ने कहा, यह सम्मान पूरे पंचायत परिवार और पंचायतवासियों की उपलब्धि है।
1: हमको बहुत खुशी है कि महिला मुखिया के सरकार ने यह सम्मान दिया कि हमको दिल्ली बुलाया गया, इससे हम और अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं।
0: जिले में किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी अभियान के तहत पंजीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी अजीत प्रकाश ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 1,86,000 लाभार्थी हैं, जिनमें से अब तक 1,00,000 किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। यह कुल लाभार्थियों का 54.23% है। उन्होंने बताया कि फार्मर आईडी बनाने के मामले में नवादा जिला राज्य में 5वें स्थान पर है। फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, खाद बीज पर अनुदान तथा फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इधर जिले में खरीफ फसल की बुआई को लेकर किसान धान का बिचड़ा डालने के लिए खेत तैयार करने में जुटे हैं। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में 8500 हेक्टेयर क्षेत्र में बिचड़ा डालने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इधर रोहिणी नक्षत्र के दौरान हुई मूसलाधार बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है, जिससे किसानों ने खेतों की जुताई का कार्य तेज कर दिया है। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिले में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने इस पहल को सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाना और उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराना है। श्री सुमन ने कहा कि सबका सम्मान सबका आसान हो कार्यक्रम के तहत सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि पूर्व में सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार तथा शिकायत निवारण अधिनियम के माध्यम से समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया था। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को लागू किया गया है, जिससे आम लोग अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान करा सकेंगे। नवादा सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की गई। सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
2: के बीच में एक अच्छा संवाद हो और समीक्षा हुई केंद्र और बिहार सरकार की सभी योजनाओं की और नवादा के विकास में अच्छा योगदान आज के बैठक में रहेगा।
0: नवादा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। मई माह में हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 45 दिनों के दौरान हाथियों के उत्पात में कुल 4 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है।
3: अभी आप सुन रहे थे नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। श्रोता, ई मनपसंद कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, भारत के सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिकाओं में से एक सुमन कल्याणपुर, जिन्होंने हिंदी, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बंगाली, ओडिशा और पंजाबी के अलावा अन्य कई भाषाओं में फिल्मी गानों के लिए गाने रिकॉर्ड किए हैं। इस मशहूर पार्श्व गायिका का निधन कल यानी 31 मई 2026 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो चलिए, श्रद्धांजलि स्वरूप हमारे कई श्रोताओं ने उनके गाए गाना सुनना चाहा है। उनमें से एक हमारे श्रोता हैं, फुटानी चौक नारायण स्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, आराध्या और लल्लू पंडित। इन्होंने जहां प्यार मिले फिल्म का ये गाना सुनना चाहा है, जिसे सुमन कल्याणपुर ने ही गाया है। और इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। और इसी गाने को सुनना चाहते हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खांडवा से हमारे श्रोता अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। और यह हमारे श्रोता हैं जिन्होंने ईमेल किया है, यह है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहनाज, तलत जहनाज, फरत जहनाज, रिफात जहनाज, नुजहत जहनाज, साजिया शाहिनाज, नाजिया नूरीनाज। और कलेर विहार से निकात परवीन, सदा फारजू, सदिया तस्नीम और अलीशा। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। तो चलिए, आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत। फिल्म है जहां प्यार मिले। और श्रोताओं, कालका से ये हमारे श्रोता है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। तो लीजिए, आप सब सुनिए ये गीत।

श्रद्धांजलि स्वरूप हमने आपको सुनवाया सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत। आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं हमारा ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में, संतोष आनंद के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फरमाइशी मैसेज किया है दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से हमारे श्रोता हैं एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। और ये हमारे श्रोता हैं दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। इसी गाने के लिए ये भी ईमेल फरमाइश भेजा है हमारे श्रोता नेकागांव धर्मशाला सासाराम से।

राजेंद्र सिंह, शकुंतला देवी, प्रीति कुमारी, राहुल और बादल ने भी। तो चलिए, आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रोतो अपने ट्यून किया आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मन पसंद। मेरा नाम जोकर। अब हम सुनवा रहे हैं इस फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में, शैलेंद्र की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत। ईमेल किया है हमारे श्रोता ग्राम पोस्ट मुंगीसारपुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांती कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया और वेद बाबू कठेरिया। और ये हमारे श्रोता हैं नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, साइक चांद, फारूक, सईद खलील, मुबीन भाई और मोहम्मद यासीन। ये हमारे श्रोता हैं

महरारा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशव अब्बासी। तो चलिए आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत।

इसी गाने को सुनना चाहा है कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हमारे श्रोता गंगाधर सावनकर और विजयलक्ष्मी सावनकर।

ई मन पसंद कार्यक्रम में अब हम सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर दो रास्ते फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत को पसंद किया है हमारे श्रोता कुवात बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरित रमेश साहू, डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से सदानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, समस्तीपुर क्षमा करेंगे सारिमपुर बक्सर से हमारे श्रोता हैं राज एस जी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। और ये हमारे श्रोता हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनाबाद से मोहम्मद सादिक, मुस्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोंड और मोहम्मद शादाब खत्री।

का गीत अब हम सुना रहे हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, समीर के बोल हैं और आनंद मिलिंद का संगीत। और इसके लिए ईमेल किया है हमारे श्रोता चौसा गोला बक्सर से जयराम बिंद, सीतामोनी देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न और प्रीतम कुमार। गढ़मुक्तेश्वर काका ठेर से राजकुमार, जानकी देवी, पुनीत कुमार, सपना कुमारी और भावना कुमारी। ग्राम बेलाड़ी सासाराम से हमारे श्रोता हैं उपेंद्र पासवान, दिलीप कुमार सिंह और सुरेंद्र महतो। बंगलाघाट बक्सर से ये हमारे श्रोता हैं ललन प्रसाद। करणवीर हाउस भोचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन और अभिजोत। तो चलिए आप लोगों के लिए हम पेश कर रहे हैं दिल फिल्म का ये गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं, तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पर अपना मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है akashvanisasaram@gmail.com और अपराह्न 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही मेल करें, हम आपकी फरमाइश जरूर शामिल करेंगे। चलिए अब कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं राजकुमार फिल्म का एक गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हजरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है शंकर जय किशन ने, और इसे सुनना चाहा है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसारपुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सविस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद और सगुप्ता अंजुम ने भी इसी गाने को सुनना चाहा है, और ये हमारे श्रोता हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।

नगर पंचायत दिनारा से इसी गाने को सुनना चाहा है हमारे श्रोता जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीता मोनी देवी और आपके परिवार के सभी सदस्य।

हम तेरी गंगा मैली। कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से आप सबकी पसंद पर। गीत को गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। हजरत जयपुरी की रचना है और रविंद्र जैन का संगीत। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और आपके परिवार के सभी सदस्य। और यह हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर काला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। मुजफ्फरपुर बिहार से राजकुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकू, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। तो चलिए हम आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत।

और श्रोताओं, इस गाने के साथ ही आज का ये मनपसंद कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब हम कुछ ही पलों में रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ

0: भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement

0: लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
1: आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट,
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: ऑफ आवर शेयर्ड फ्यूचर।
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक

0: का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां तैयार

0: और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-2371-7117 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग।
3: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। रात्रि के 9 बजे हैं। लोकधारा कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं भोजपुरी लोकगीत। आरंभ में लीजिए सुनिए विवाह रानी सिन्हा के स्वर में ये शिव विवाह गीत।

विंध्यवासिनी सिन्हार सहेलियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये लोकगीत। और अब लोकधारा कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं केसरी नंदन भगत और साथियों के स्वर में ये निर्गुण

श्री श्री नंदन भगत और साथियों के गए इस निर्गुण के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। अब हम आपको सुना रहे हैं बंदगी कार्यक्रम में

असलम अकरम साबरी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये नात, और इसी के साथ बंदगी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है, रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब हम थोड़ी देर में रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, कूदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

औसत का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद

अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश ए हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 400।

420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।

0: प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी जुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं है। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए

फिर राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया, वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से विदा हो गई।

पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थी अभिनेत्री नरगिस की। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे थे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। इसमें हम आपको सुना रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स।

संगीत अमित पुरस्कार आकाशवाणी हिंदी एल्बम सॉन्ग्स। अब ये सुनिए क्या खता थी ये रचना, आवाज है दिल राज कौर की और रचना है सानी असलम की और संगीत दिया है आजम अली मुकर्रम ने।

मधुरा भट्टाचार्य में आप सुन रहे थे कवि संजय सिंह की रचना। आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग, और इसके अंतर्गत हम आपको सुना रहे हैं।

हिंदी एल्बम सॉन्ग। और अब पलक मुछाल और उत्कर्ष शर्मा की आवाजों में लीजिए सुनिए सतीश त्रिपाठी की ये रचना

शबनम मजीद की आवाज में आप सुन रहे थे पारंपरिक रचना और इसी के साथ रसरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट तराने। श्रोताओं, आज विश्व माता पिता दिवस है। दुनिया भर में आज ही के दिन यानी 1 जून को यह दिवस मनाया जाता है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में इस विशेष दिन को मनाने की घोषणा की थी, ताकि बच्चों के जीवन में माता पिता के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित किया जा सके। तो चलिए, आज का ये चित्रपट तराने कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं माता पिता पर। श्रोता, माता पिता किसी भी बच्चे के पहले शिक्षक, मार्गदर्शक और सुरक्षा कवच होते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात कठिन परिश्रम और अनेक बलिदान करते हैं। वे न केवल हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि हमें अच्छे संस्कार देकर समाज का एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाते हैं। भारतीय संस्कृति में माता पिता को भगवान के समान दर्जा दिया गया है।

जी हाँ, अभी आपने सुना, हम सब हरिहरन, घनश्याम बासवानी और प्रतिभा और संस्कार सिखाती है, वही पिता हमें अनुशासन, मेहनत और जीवन की चुनौतियों से लड़ना सिखाते हैं। यदि मां का प्यार दुलार देखना है तो इस गीत को सुनिए।

0: बज है तू।
1: श्रोताओं, अभी आपने देखा इस गीत के माध्यम से माँ का प्यार और दुलार। बहरहाल ये गीत हमने लिया था आराधना फिल्म से, आवाज थी लता मंगेशकर की। और अब बात पिता की। तो जैसा कि हमने कहा, पिता हमें अनुशासन, और जीवन की चुनौतियों से लड़ना सिखाते हैं। और यह तभी संभव होगा जब शुरू से ही हम अपने बच्चों में इस तरह का संस्कार डालें।

नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का।

यह सदो सच्चा इंसान वही है जिसमें इंसानियत जिंदा है, और इसकी नींव हर माँ बाप की जिम्मेदारी है।

वो बच्चा अपने माँ बाप का भी कदर करेगा और देश का भी। और अब श्रोताओं, दुनिया भर में कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, यानी कि उनके सर से लौकिक माँ बाप का साया छिन गया है। तो कार्यक्रम का आखिरी गीत हम समर्पित कर रहे हैं सर्वशक्तिमान के लिए, जो सबके माता पिता हैं और सबका ख्याल रखते हैं। कहने का मतलब कि हम ये गीत समर्पित कर रहे हैं सर्वशक्तिमान भगवान को। आइए सुनते हैं।

कर रहे हैं सर्वशक्तिमान के लिए जो सबके माता पिता हैं और सबका ख्याल रखते हैं। कहने का मतलब कि हम ये गीत समर्पित कर रहे हैं सर्वशक्तिमान भगवान को। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे मैं चुप रहूं फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत। और इसके साथ चित्रपट तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

कल सुबह 7:30 पर रोज की तरह हमारे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम होगा नमस्ते रोहतास। 8:20 पर पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम होगा।

आकाशवाणी सासाराम है। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कल प्रसारित और रिलीज होने वाले हमारे शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण के बारे में और मौसम पूर्वानुमान।

सुबह 9:30 पर और रात्रि 9:30 पर हम रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार, और कल सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज। इसके अंतर्गत सुनिएगा रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड करसरवा पंचायत के सकास गांव के लोगों से नाली गली बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि कार्य के मिल रही सुविधाओं पर की गई बातचीत।

सुबह 10:30 बजे लोक माधुरी कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम लोकगीत और 10:45 पर भोजपुरी एल्बम सॉन्ग सुनिएगा कार्यक्रम रसधार के अंतर्गत। 11 बजे से हम आपको सुनाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

शाम की सभा में शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, और शाम 5:30 युवा साथी कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी। और इस युवाणी कार्यक्रम में हमारी बात के अंतर्गत चर्चा होगी अपने शौक को अपना हुनर बनाइए, और स्वास्थ्य और पर्यावरण का साथी साइकिल।

कल संध्या 6:05 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन। संध्या 6:10 पर किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा किसान वाणी। इसमें किसान भाई सुनेंगे खरीफ में मोटे अनाजों की खेती विषय पर डॉक्टर अंकित राव से ली गई भेंट वार्ता। इसके अलावा चर्चा होगी कार्यक्रम में मक्का की खेती विषय पर। संध्या 6:40 से आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत, और 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम प्रसारित होगा गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:50 से आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम

रात्रि 9:15 बजे समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9 बजे कार्यक्रम होगा लोकधारा, इसमें आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। रात्रि 9:15 पर गजलों के कार्यक्रम महफिल में हम आपको सुनवाएंगे कुछ गजल। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम रस रंग के अंतर्गत हिंदी एल्बम सॉन्ग्स, और रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, और अब कल के मौसम पूर्वानुमान पर एक नजर डालते हैं। कल 2 जून को 8 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सापेक्षिक आर्द्रता 60%

प्रतिशत और न्यूनतम 20% रहने की संभावना है। हवा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तो यह था कल के मौसम पूर्वानुमान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए